0: नवरत्न कुल ओइलको 2 मिनेटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाइ, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर 1 कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: रंग बहार रंग बहार
2: बर्जर संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
1: बर्जर पेन्सले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
2: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि। घर रंगाओ, खुशी बढाओ, उपहार जित्ने अवसर पाओ।
1: बर्जर पेन्सले।

0: extreme energy drink.
1: एखन भोरकवा एफएम में भोर के 7 बाजल।

0: Tosittima.
1: Mama shanga halkare mailu.
2: Aye kanya aha ka gahna bara sundar ya designo naya kata baneliye.
3: Aye Kabya Jewelers Raj Viraj ma baneliye. Ota aadhunik design ka sona chandi ka gar gahna order bamojim ka gahna guarantee ka sath banboi chhi. Aa nav grah ka patthal seho bhetai chhai.
4: Kabya Jewelers राजविराज सात मेन रोड अदालत के पूर्व प्रोपराइटर सोनी कुमारी साह आ सुनील साह मोबाइल 9817440445
5: सम्पूर्ण सुविधा से सम्पन्न यूनिक अस्पताल रायपुर रूपनी आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज
6: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान वीर अस्पताल काठमांडू एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करते
5: अठाम महिला स्त्री एवं प्रसूति पुरुष आ बाल रोग संबंधी जांच आ इलाज करते
2: सेवा आ सुविधा सब
6: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा ओपीडी मेडिसिन सेवा
2: ऑपरेशन सेवा चर्म रोग हार्ट जर्नी डायबिटीज
6: होल बॉडी जांच, सीटी स्कैन आईसीयू एनआईसीयू ओटी
5: डिजिटल एक्सरे एसी नॉन एसी कैबिन के सुविधा है
2: संपर्क कैल जाए
6: यूनिक अस्पताल रुपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक
2: फोन
6: 031-530-7076
2: मोबाइल
6: 9815-6800 आ एम्बुलेंस के नंबर 9815-56205 9815-56202
7: एकटा खुशी के खबर छौ
8: कथू छौ से
7: विदेश से छुट्टी में आल आदमी सब के श्रम स्वीकृति के काम अब राजविराज में चालू भ गेल छी आंख के फोटो आ फिंगरप्रिंट के लेल कतो बाहर नहीं जा पड़त
3: जी हाँ अली कम्युनिकेशन
6: अठम विदेश जवाक लेल श्रम स्वीकृति के काम देश विदेश के लेल हवाई टिकट बुकिंग आ टिकट के डेट चेंज भारत के लेल रेलवे टिकट बुकिंग
3: विदेश जवाक लेल ओरिएंटेशन कक्षा मेडिकल जांच कतार आ दुबई के लेल विजिट वीजा एवं विदेश में चिट्ठी पत्र पठेबाक लेल कुरियर सेवा उपलब्ध अछि
6: नया पासपोर्ट बनेबाक लेल ऑनलाइन केनाई आ विदेश जाय वाला के लेल राष्ट्रीय परिचय पत्र के फ्री ऑनलाइन फॉर्म भरनाय के संगे हरेक कंपनी के मोबाइल थोक दर में बिक्री आ मरम्मत करैत अछि
3: संपर्क
6: अली कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल्स चतुर्भुज मार्केट मेन रोड लोहार गली राजविराज 4 सप्तरी
3: फोन
6: 031-532-575
3: मोबाइल
6: 9815

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ सँ बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राजबिराज में चल रहल अछि। फिल्म हनुमान अंश,
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश, सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी सँ प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।
2: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz।

0: भौजी बहुत टेंशन में छे, की भ गेल?
1: की हेतै देखू ना, केन बॉक्स पलंग खरीद के आनलकै जे नोट कसते कसते सब टूट गेल।
0: सुनू, जय श्री हनुमान ट्रेडर्स में बहुत मजबूत बॉक्स पलंग भेटै छे, खरीद के आन लिया। आ ओहिठाम सब सामान भेटै छे।
1: ओतऽ की सब तैयार करै छे यो?
0: बॉक्स पलंग, थ्री पीस आ टू पीस दराज, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, कुर्सी, अलना, ड्रेसिंग टेबल, बाघ पंजा सोफा सेट।
2: जी हाँ, शादी विवाह आ ऑफिस के लेल संपूर्ण सामान आधुनिक मशीन से कंप्यूटर के डिजाइन अनुसार फर्नीचर तैयार कैल जाय छे।
0: 5x6 फीट के फुल बुटा के बॉक्स पलंग शादी सेट 35,000 आ 6x7 फीट के शादी सेट बॉक्स पलंग 45,000 में भ जात। संगे मॉडल किचन खरात कार्विन के व्यवस्था छे। पलाई, फर्मेका, रेडीमेड ढोका, हैंडल, हत्था, कांटी, कब्जा, स्प्रिट, चपरा आ शीशा लगात फर्नीचर के संपूर्ण सामान उपलब्ध है।
2: प्रोपराइटर शंभु सुथियार।
0: जय श्री हनुमान ट्रेडर्स, राजविराज 1, कंचनपुर रोड, नहर चौक, चूड़ा मिल के बगल में।
2: मोबाइल
0: 98047040 आ 98628660270।

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ सँ बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राज विराज में चल रहा है। फिल्म हनुमान अंश,
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश, सब परिवार आब देखो आ बाबा नीम करोली के जीवनी सँ प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।
2: फिरता फिरता 20% सम्म क्यास फिरता जैले पनि जहाँ पनि
3: क्यास फिरता लिनु भए त
4: एनसेल प्याक किन्नु भए त जैले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्यास फिरता एनसेल एप मा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: ditton indra leone नवरत्न कुल ओइलको दुई मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाइ थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: कतेक दर्द करै छे, ठेहुन भीने आ नस फुलि जाइ छे।
2: की भ गेला से?
1: ओ बुआ, नस फुलि गेलै आ ठेहुन के जोड़ से दर्द करै छे।
3: आप चिंता नहीं कर, चलो मंडल जी के क्लिनिक राजविराज में
2: डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल से जांच करा दे छियो।
4: एरो आ हमारे डाल का नस बड़ दुखाई या बारे, ठीक भ जतै न?
2: पूरे ठीक भ जतै।
5: जी हाँ, हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल MBBS MS।
6: हर प्रकारक टूटल हड्डी जोड़नाए, प्लास्टर, ऑपरेशन आ नस रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि। संपर्क कैल जाए।
5: हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल, नर्मदा अर्थो केयर सेंटर, राजविराज, नेता चौक दक्षिण, हीरा फार्मेसी।
6: मोबाइल 9847996749 आ 9817930096।
7: आप अपने निवास सप्तरी सेवा आश्रम वेटनरी अस्पताल से पश्चिम 2400 घंटा लैब आ फार्मेसी सुविधा के साथ सेवा दर आल।

0: extreme energy drink.
1: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz।

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ सँ बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राजबिराज में चल रहल अछि। फिल्म हनुमान अंश
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी सँ प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।
0: राज विराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल अछि।
2: जो एहन कोनो समस्या अछि त निक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
0: याद राखू सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
2: फोन नंबर 9800118978।
3: फिरता फिरता 20%
4: एनसेल प्याक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरिद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्यास फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: நிற்றோன் என்றால் லியோனே नवरत्न कुल ओइलको दुई मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाइ, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: रंग बहार रंग बहार
2: बर्जर सँगै उपहारै उपहार, बम्परमा यामाहा रेजियर।
1: बर्जर पेन्सले घर रंगाउनुहोस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियर 125 स्कुटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनुहोस्।
2: साथै 65 इन्चको स्मार्ट टिभी, रेफ्रिजरेटर, वासिङ मसिन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि। घर रंगाऊ, खुशी बनाऊ, उपहार जित्ने अवसर पाऊ।
1: बर्जर पेन्सले।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
1: अपाङ्गता भेल व्यक्ति, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक आ बिरामी के विशेष ध्यान देबाक चाही।
2: आइ काल्हि अत्यधिक गर्मी आ गरम हवा चल वाला समय अछि। ताइ एहन अवस्था में जर एनाय, उल्टी जका लगनाय, थकान लगनाय, बेसी प्यास लगनाय, धड़कन बढ़नाय, श्वास प्रश्वास में समस्या भेनाय, अत्यधिक माथ दुखेनाय, बेहोश भेनाय, मांसपेशी सब दुखेनाय, उल्टी भेनाय जेहन समस्या सब देखल जा सकत अछि।
1: गरम हवा के प्रभाव तथा लू लाग से बचे वाला उपाय सब,
2: जूस शरबत आदि प्रशस्त मात्रा में पियल जाओ।
1: दिन भर प्रशस्त पानी आ झोर वाला चीज सब सेवन कैल जाए।
2: हल्का ढीला आ सूती के कपड़ा सब लगावल जाए।
1: संभवतः ठंडा स्थान में बैसल जाए।
2: दोपहर के समय में अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाओ।
1: बाहर जाइए पर छाता, टोपी, चश्मा आ पंजा प्रयोग कैल जाए।
2: खाली पेट बाहर नहीं जाओ।
1: दोपहर के समय में कड़ा शारीरिक परिश्रम नहीं कैल जाए।
2: स्वास्थ्य संबंधी कोनो प्रकार के समस्या देखल जायत अछि तऽ स्वास्थ्य कर्मी संग नियमित संपर्क में रह अनुरोध कैल जायत अछि। सबल नेपाल आ समा

0: ഇത്തൈമ
1: മമശങ്ങ ആൾക്കാരെ മല്ലു.
2: ये दीदी देह भारी छे आ डाँड पीठ से दुखाइए कोन उपाय करबे?
3: बहुत पुरान आ अनुभवी छे डॉक्टर दिलीप कुमार सा अपने घर में सेवा दे रहल छे, चलू ना ओते जांच करा दे छी।
4: अब अपने भवन राजविराज में गजेंद्र नारायण सिंह सर माथा अंचल अस्पताल में कार्यरत प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार शाह टीचिंग अस्पताल काठमांडू MD
3: प्रसूति आ स्त्री रोग संबंधी संपूर्ण जांच आ इलाज करैत अछि।
4: सेवा आ सुविधा सब
3: बच्चादानी खसनाई के ऑपरेशन सेवा,
5: गर्भवती महिला जाँच,
3: स्त्री रोग,
5: लिकोरिया,
3: महीनावारी गड़बड़ी,
5: पीठ
3: आ डाँड दुखेनाई,
5: पेशाब जलन,
3: मांस बढ़नाई,
5: निसंतान दंपति के परीक्षण,
3: IUI सेवा,
5: वीडियो एक्सरे,
4: आधुनिक लैब के संगे फार्मेसी सेवा उपलब्ध
5: अवश्य सेवा के मौका देल छे।
4: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार शाह राजविराज हनुमान नगर रोड साबिक जन स्वास्थ्य ऑफिस से पूरब छिन्नमस्ता अस्पताल के सामने दक्षिण साइड।
5: मोबाइल
4: 9861 77985 आ 9817 89133।

0: extreme energy drink.
1: ये सुनो
2: की कहे छे
1: हम जाय छी तिरुपति ट्रेडर्स में वही ठाम सीजन अनुसार के सब व्यू विजन भेटे छे खरीद लेबे चल लेबे
2: एकटा रोटावेटर के ऑर्डर सेहो दे देबे
1: हेते
3: तिरुपति ट्रेडर्स राजविराज
4: जी हाँ एहिठाम विभिन्न प्रकारक औद्योगिक मशीन उचित दाम में उपलब्ध है
2: चप्पल बनावे वाला मशीन
4: मुर्गा दाना बनावे वाला मशीन आ माछ उत्पादन के लेल कृषि औजार सामान सब
2: पावर ट्रेलर
4: थ्रेसर
2: रोटावेटर
4: कम्पाइन धान आ गहूम काटे वाला मशीन
2: रोपे वाला मशीन
4: स्प्रे मिल सेट जेनरेटर
2: कृषि औजार स्पेयर पार्ट्स
4: आ बोरिंग सामान संगे घर निर्माण आ हार्डवेयर संबंधी संपूर्ण सामान उपलब्ध है
3: तिरुपति ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स कंचनपुर रोड राजविराज 8
4: प्रोप्राइटर अशोक कुमार यादव
2: मोबाइल
4: 9807788897 आ 9847552178
5: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz

0: एखन भोरकवा एफएम मा दिन के 9 बाजल। बाढ़ के मौसम में सतर्क रहू आ सुरक्षित रहू। बाढ़ कोनो बखत आबि सकैत अछि, ताहि प्रतिकार के लेल तैयार रहू।
1: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग DHM द्वारा नेपाल के विभिन्न भाग में औसत से बेसी वर्षा होबाक पूर्वानुमान कयल गेल अछि, जै कारण बाढ़ आ कटान के जोखिम बढ़ सकैत अछि।
0: सतर्क रहि कऽ आवश्यक जानकारी प्राप्त करू आ स्थानीय सूचना सब के पालन करू। अहाँ के सुरक्षा अहीं के जानकारी पर निर्भर अछि।
1: बाढ़ के जोखिम भेला पर ई उपाय सब अपनाओल जाओ।
0: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, वडा कार्यालय, स्थानीय सरकार तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण संबंधी जिम्मेवार व्यक्ति सब प्राप्त बाढ़ संबंधी जानकारी आ चेतावनी के ध्यान पूर्वक सुनू आ तही अनुसार उपयुक्त निर्णय लिअ।
1: नजदीक रहल नदी खोला में पानिक बहाव के नियमित रूप में अनुगमन करू। नदी किनार या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में वसवास कर रहल छी तो सुरक्षित आश्रय स्थल या उचगर स्थान में रहू आ सुरक्षित रूप से निकले वाला रास्ता बाट खोजू।
0: सूचना द्वारा चेतावनी जारी भेल तो देर नहीं कर तुरंत सुरक्षित स्थान में जेबाक लेल तैयार रहू।
1: अति आवश्यक सामान जना कि टॉर्च लाइट, मोबाइल फोन, चार्जर, दवाई, सूखा खाए वाला सामान, सफा पीबा वाला पानी, नगद रुपया, नागरिकता, पासपोर्ट लगायत अन्य प्रमाण पत्र सब झटपट झोला में तैयारी अवस्था में राखू। झटपट झोला का घर भीतर जल्दी पहुँचा वाला आ तुरंत लो जा सके वाला स्थान में राखू।
0: अपन संपत्ति के सुरक्षा करू, संभव अछि तो बहुमूल्य सामान आ चौपाया के उचगर स्थान में लो जाओ।
1: दोसरो के मदद करू, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपंगता भेल व्यक्ति सब के आवश्यक सहयोग करू। गर्भवती, सुतकेरी आ स्तनपान करा रहल माई के लेल सुरक्षित वास के व्यवस्था करू। ओ सब के लेल सकभर अलगे आ सुरक्षित चर्पी के प्रबंध करू।
0: विपद के बाद होवा वाला सर्पदंश तथा पानी जन्य संक्रामक रोग के जोखिम रहला सँ सचेत रहू। ई सूचना परिवार, पड़ोसी आ जन समुदाय में जानकारी कराओ।
1: बाढ़ दरवाजा तक आबि जाय ऐसे पहिने तैयार रहू आ आइए से सतर्क भ जाओ।
0: ई संदेश अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र ईसी मोड अंतर्गत के हाईग्रिड परियोजना द्वारा ऑस्ट्रेलियन सरकार आ सबल नेपाल के सहयोग में प्रसारण कयल गेल अछि।
2: चेतावनी सुनो, तुरंत निर्णय लिया आ सुरक्षित रहू।
3: संपूर्ण सुविधा से संपन्न यूनिक अस्पताल रायपुर रूपनी आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज।
4: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरन, वीर अस्पताल काठमांडू, एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करते
3: अठाम महिला, स्त्री एवं प्रसूति, पुरुष आ बाल रोग संबंधी जांच आ इलाज करते
5: सेवा आ सुविधा सब
4: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा, OPD, मेडिसिन सेवा,
5: ऑपरेशन सेवा, चर्म रोग, हार्ट जर्नी, डायबिटीज,
4: होल बॉडी जांच, सीटी स्कैन, ICU, NICU, OT,
3: डिजिटल एक्सरे, AC, नॉन AC कैबिन के सुविधा है। संपर्क कैल जाए
4: यूनिक अस्पताल रूपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक।
5: फोन
4: 031-530-7076,
5: मोबाइल
4: 9805-60800 आ एम्बुलेंस के नंबर 9805-56205, 9805-56202।
6: फिरता फिरता 20% सम्म क्यास फिरता,
7: जैले पनि चाह पनि
8: क्यास फिरता लिनु भए त,
9: एनसेल प्याक किन्नु भए त,
10: जैले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्यास फिरता एनसेल एप मा क्लेम गर्नुहोस्।
11: एनसेल प्याक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: अली कम्युनिकेशन एंड ट्रेवल्स, चतुर्भुज मार्केट, मेन रोड, लोहार गली, राजविराज 4, सप्तरी।
1: फोन
0: 0315325575।
1: मोबाइल
0: 9801502475।
2: रंग बहार
3: बर्जर संगे उपहारे उपहार बम्परमा यामाहा रेजियार
2: बर्जर पेन्सले घर रंगाउनुहोस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कुटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनुहोस्।
3: साथै 65 इन्चको स्मार्ट टिभी, रेफ्रिजरेटर, वासिङ मसिन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि। घर रंगाऊ, खुशी बनाऊ, उपहार जित्ने अवसर पाऊ।
2: बर्जर पेन्स।

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ से बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राज बिराज में चल रहा है। फिल्म हनुमान अंश
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी से प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।
2: अपने साथ रहिए बोलकवा एफएम।

0: देखाइए कोन उपाय करबै। बहुत पुरान आ अनुभवी छे डॉक्टर दिलीप कुमार सा अपने घर में सेवा दे रहल छे, चलू न ओते जांच करा दे छी।
1: अब अपने भवन राजविराज में गजेंद्र नारायण सिंह सर माथा अंचल अस्पताल में कार्यरत प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार सा टीचिंग अस्पताल काठमांडू MD
0: प्रसूति आ स्त्री रोग संबंधी संपूर्ण जांच आ इलाज करैत अछि।
1: सेवा आ सुविधा सब
0: बच्चादानी खसनाई के ऑपरेशन सेवा, गर्भवती महिला जांच, स्त्री रोग, लिकोरिया, महीनावारी गड़बड़ी, पीठ आ डाँड दुखेनाई, पेशाब जलन, मांस बढ़नाई, निसंतान दंपति के परीक्षण, IUI सेवा, वीडियो एक्सरे,
1: आधुनिक लैब के संगे फार्मेसी सेवा उपलब्ध
0: अवश्य सेवा के मौका देल जाए।
1: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार सा राजविराज हनुमान नगर रोड साबिक जन स्वास्थ्य ऑफिस से पूरब छिन्नमस्ता अस्पताल के सामने दक्षिण साइड।
0: मोबाइल
1: 9861 77985 आ 9817 89133।

0: extreme energy drink.
1: ये सुनू
2: की कहे छे?
1: हम जाए छी तिरुपति ट्रेडर्स में, वही ठाम सीजन अनुसार के सब व्यू विजन भेटे छे, खरीद लेबे आ चल अबे।
2: एकटा रोटावेटर के ऑर्डर सेहो दे देबे।
1: हेते
3: तिरुपति ट्रेडर्स राजविराज।
4: जी हाँ, एहिठाम विभिन्न प्रकारक औद्योगिक मशीन उचित दाम में उपलब्ध है।
2: चप्पल बनाबे वाला मशीन,
4: मुर्गा दाना बनाबे वाला मशीन आ माछ उत्पादन के लेल कृषि औजार सामान सब,
2: पावर ट्रेलर,
4: थ्रेसर,
2: रोटावेटर,
4: कम्पाइन, धान आ गहूम काटे वाला मशीन,
2: रोपे वाला मशीन,
4: स्प्रे, मिल सेट, जनरेटर,
2: कृषि औजार, स्पेयर पार्ट्स
4: आ बोरिंग सामान संगे घर निर्माण आ हार्डवेयर संबंधी संपूर्ण सामान उपलब्ध।
3: तिरुपति ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स, कंचनपुर रोड, राजविराज 8।
4: प्रोप्राइटर अशोक कुमार यादव।
2: मोबाइल
4: 9807788897 आ 9807452178।
5: अखन अपने साथ रहिए बोलकबा।

0: এখন ভরতমা এফএম মা দিনকে 10 বাজল রাজ বিরাজ মে আপ সব প্রত্যেক দিন বরিষ্ঠ ছালা যৌন রোগ তথা সৌন্দর্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রঞ্জু পোখরেল এমবিবিএস এমডি ডার্মাটোলজিস্ট দ্বারা যাচ ইলাজ ভ রহল আছে
1: যা এহেন কোন সমস্যা আছে তা নিক আ প্রভাবকারী ইলাজ কে লেল अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करो।
0: याद रखो सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
1: फोन नंबर 9890811978।
2: फिरता फिरता 20% सम्म क्यास फिरता।
3: जैले पनी चाह पनी।
4: क्यास फिरता लिनु भए त?
5: एनसेल प्याक किन्नु भए त? जैले पनी जहाँ पनी प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्यास फिरता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भए त? शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: नवरत्न कूल ओइलको दुई मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाइ, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कूल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: कतेक दर्द करै छै, ठेहुन भीने आ नस फुलि जाइ छै।
2: की भ गेला से?
1: ओ बौआ, नस फुलि गेलै आ ठेहुन के जोर से दर्द करै छै।
3: आप चिंता नहीं कर, चलो मंडल जी के क्लिनिक राजविराज में
2: डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल से जांच करा दे छियै।
4: रो आ हमर डाढ़ के नस बड़ दुखाइया बारे, ठीक भ जतै न?
2: पूरे ठीक भ जतै।
5: जी हाँ, हार जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल MBBS MS।
6: हर प्रकारक टूटल हड्डी जोड़नाए, प्लास्टर, ऑपरेशन आ नस रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि। संपर्क कैल जाए।
5: हार जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल, नर्मदा अर्थो केयर सेंटर, राजविराज, नेता चौक दक्षिण, हीरा फार्मेसी।
6: मोबाइल 9847996749 आ 9817930096।
7: आप अपने निवास सप्तरी सेवा आश्रम वेटनरी अस्पताल से पश्चिम 2400 घंटा लैब आ फार्मेसी सुविधा के साथ सेवा दर आल।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
1: अपाङ्गता भेल व्यक्ति, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक आ बिरामी के विशेष ध्यान देबाक चाही।
2: आइ काल्हि अत्यधिक गर्मी आ गरम हवा चलो वाला समय अछि। ताई एहन अवस्था में जर एनाय, उल्टी जका लगनाय, थकान लगनाय, बेसी प्यास लगनाय, धड़कन बढ़नाय, श्वास प्रश्वास में समस्या भेनाय, अत्यधिक माथ दुखेनाय, बेहोश भेनाय, मांसपेशी सब दुखेनाय, उल्टी भेनाय जेहन समस्या सब देखल जा सकत अछि।
1: गरम हवा के प्रभाव तथा लू लागे से बचे वाला उपाय सब,
2: जूस शरबत आदि प्रशस्त मात्रा में पियल जाओ।
1: दिन भर प्रशस्त पानी आ झोर वाला चीज सब सेवन कैल जाए।
2: हल्का ढीला आ सूती के कपड़ा सब लगावल जाए।
1: संभवतः ठंडा स्थान में बैसल जाए।
2: दोपहर के समय में अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाओ।
1: बाहर जाइए पर छाता, टोपी, चश्मा आ पंजा प्रयोग कैल जाए।
2: खाली पेट बाहर नहीं जाओ।
1: दोपहर के समय में कड़ा शारीरिक परिश्रम नहीं कैल जाए।
2: स्वास्थ्य संबंधी कोनो प्रकार के समस्या देखल जाए तो स्वास्थ्य कर्मी संग नियमित संपर्क में रह अनुरोध कैल जाए। सबल नेपाल आ समावेशी अपांग संग सप्तरीक साझेदारी तथा CBM ग्लोबल के सहयोग में संचालित अपांगता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना द्वारा जनहित में जारी संदेश।
3: अपने साथ दूर रहिए, बोलो कुबा।

0: बाढ़ के मौसम में सतर्क रहू आ सुरक्षित रहू। बाढ़ कोनो बखत आबि सकैत अछि, ताई प्रतिकार्य के लेल तैयार रहू।
1: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग DHM द्वारा नेपाल के विभिन्न भाग में औसत से बेसी वर्षा होबाक पूर्व अनुमान कयल गेल अछि, जै कारण बाढ़ आ कटान के जोखिम बढ़ सकैत अछि।
0: सतर्क रह कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करू आ स्थानीय सूचना सब के पालन करू। अहाँ के सुरक्षा अही के जानकारी पर निर्भर अछि।
1: बाढ़ के जोखिम भेला पर ई उपाय सब अपनावल जाओ।
0: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, वडा कार्यालय, स्थानीय सरकार तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण संबंधी जिम्मेवार व्यक्ति सब प्राप्त बाढ़ संबंधी जानकारी आ चेतावनी के ध्यान पूर्वक सुनू आ तही अनुसार उपयुक्त निर्णय लिय।
1: नजदीक रहल नदी खोला में पानिक बहाव के नियमित रूप में अनुगमन करू। नदी किनार या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बसोबास कर रहल छी त सुरक्षित आश्रय स्थल या उचगर स्थान में रहू आ सुरक्षित रूप से निकले वाला रास्ता बाट खोजू।
0: सूचना द्वारा चेतावनी जारी भेल त देर नै क तुरंत सुरक्षित स्थान में जेबाक लेल तैयार रहू।
1: अति आवश्यक सामान जना कि टॉर्च लाइट, मोबाइल फोन, चार्जर, दवाई, सूखा खाए वाला सामान, सफा पीबा वाला पानी, नगद रुपया, नागरिकता, पासपोर्ट लगायत अन्य प्रमाण पत्र सब झटपट झोला में तैयारी अवस्था में राखू। झटपट झोला का घर भीतर जल्दी पहुँच वाला आ तुरंत लौ जा सके वाला स्थान में राखू।
0: अपन संपत्ति के सुरक्षा करू, संभव अछि त बहुमूल्य सामान आ चौपाया के उचगर स्थान में लौ जाओ।
1: दोसरो के मदद करू, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपंगता भेल व्यक्ति सब के आवश्यक सहयोग करू। गर्भवती, सुतकेरी आ स्तनपान करा रहल माई के लेल सुरक्षित वास के व्यवस्था करू। ओ सब के लेल सकभर अलगे आ सुरक्षित चर्पी के प्रबंध करू।
0: विपद के बाद होवा वाला सर्पदंश तथा पानी जन्य संक्रामक रोग के जोखिम रहला सँ सचेत रहू। ई सूचना परिवार, पड़ोसी आ जन समुदाय में जानकारी कराओ।
1: बाढ़ दरवाजा तक आबि जाए ऐसे पहिने तैयार रहू आ आइए से सतर्क भ जाओ।
0: ई संदेश अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र ईसी मोड अंतर्गत के हाईग्रिड परियोजना द्वारा ऑस्ट्रेलियन सरकार आ सबल नेपाल के सहयोग में प्रसारण कयल गेल अछि।
2: चेतावनी सुनू, तुरंत निर्णय लिया, असुरक्षित रहू।

0: Τόσο σύνθημα!
1: Μάμα σιάνα, χάλκα ρε μαλλιού.
2: ভৌজি বহুত টেনশন মচ্ছে কি ভগেল
3: কি হেতে দেখো না কেন বক্স পলং খরিদ কানলকে যে নোট কষ্টে কষ্টে সব টুইট গেল
2: শুনু জয় শ্রী হনুমান ট্রেডার্স মে বহুত মজবুত বক্স পলং ভেটে যে খরিদ কা আইন লিয়া আর ওই ঠাম সব সামান ভেটে যে
3: ও তো কি সব তৈয়ার করে ছে ইউ
2: বক্স পলং 3 পিস আর 2 পিস দরাজ সোফা সেট ডাইনিং টেবিল কুরসি আলনা ড্রেসিং টেবিল বাগ পঞ্জা সোফা সেট
4: জি হ্যাঁ शादी विवाह आ ऑफिस के लेल संपूर्ण समान आधुनिक मशीन से कंप्यूटर के डिजाइन अनुसार फर्नीचर तैयार कयल जाय छे
2: 5x6 फीट के फुल बुटा के बॉक्स पलंग शादी सेट 35,000 आ 6x7 फीट के शादी सेट बॉक्स पलंग 45,000 में भ जात संगे मॉडल किचन खराद कार्विन के व्यवस्था छे प्लाई फॉर्मिका रेडीमेड ढोका हैंडल हत्था कांटी कब्जा स्प्रिट चपरा आ शीशा लगायत फर्नीचर के संपूर्ण समान उपलब्ध है
4: प्रोप्राइटर शंभु सुथियार
2: जय श्री हनुमान ट्रेडर राजविराज 1 कंचनपुर रोड नहर चौक चूड़ा मिल के बगल में
4: मोबाइल
2: 9847040070 आ 9862886270
5: फिरता फिरता 20% समके सुफिरता
6: जाइले पानी चाहा पानी
7: कैश फिरता लिनु भएता
8: एनसेल पैक किन्नु भएता
9: जाइले पानी जहाँ पानी पैक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म कैश फिरता एनसेल ऐप मा क्लेम गर्नुहोस्
8: एनसेल पैक किन्नु भएता सर्तहरू लागू हुनेछन् एनसेल नेपालकै लागि

एकोता जमुनिया है तई संतोष करती हामा संतोष करती है।

0: एखन भड़कवा एफएम में दिन के 11 बाजल
1: संपूर्ण सुविधा से संपन्न यूनिक अस्पताल रायपुर रूपनी आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज
2: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरन वीर अस्पताल काठमांडू एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करैत अछि
1: एहिठाम महिला स्त्री एवं प्रसूति पुरुष आ बाल रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि
3: सेवा आ सुविधा सब
2: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा ओपीडी मेडिसिन सेवा
3: ऑपरेशन सेवा चर्म रोग हार्ट जर्नी डायबिटीज
2: होल बॉडी जांच सिटी स्कैन आईसीयू एनआईसीयू ओटी
1: डिजिटल एक्सरे एसी नॉन एसी कैबिन के सुविधा है
3: संपर्क कर जाए
2: यूनिक अस्पताल रुपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक
3: फोन
2: 031-530-7076
3: मोबाइल
2: 9805-60800 आ एम्बुलेंस के नंबर 9805-56205 9805-56202
4: फिरता फिरता 20% सम्म क्यास फिरता
5: जैले पनी चाहा पनी
6: क्यास फिरता लिनु भएता
7: एनसेल प्याक किन्नु भएता जैले पनी जहाँ पनी प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्यास फिरता एनसेल एप मा क्लेम गर्नुहोस् एनसेल पैक किन्नु भयो त शर्तहरू लागू हुनेछन् एनसेल नेपालकै लागि

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ सँ बेसी के कारोबार विश्व भरि मे करो मे सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राज विराज मे चल रहल अछि। फिल्म हनुमान अंश,
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश, सब परिवार आबि देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी सँ प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।

0: extreme energy drink.
1: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz।

0: So sit they ma.
1: Mama shanga, hal kare mailu.
2: संपूर्ण सुविधा से संपन्न यूनिक अस्पताल रायपुर रूपनी आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज
3: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरन वीर अस्पताल काठमांडू एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करे
2: अठाम महिला स्त्री एवं प्रसूति पुरुष आ बाल रोग संबंधी जाँच आ इलाज करेत
4: सेवा आ सुविधा सब
3: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा ओपीडी मेडिसिन सेवा
4: ऑपरेशन सेवा चर्म रोग हार्ट जर्नी डायबिटीज
3: होल बॉडी जांच सीटी स्कैन आईसीयू एनआईसीयू ओटी
2: डिजिटल एक्सरे एसी नॉन एसी कैबिन के सुविधा है
4: संपर्क कर जाए
3: यूनिक अस्पताल रूपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक
4: फोन
3: 031-530-7076
4: मोबाइल
3: 9805-60800 आ एम्बुलेंस के नंबर 9805-56205 9805-56202
5: फिरता फिरता 20% समकेस फिरता
6: जाइले पानी चाहा पानी
7: कैश फिरता लिनु भए त
8: एनसेल पैक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस् एनसेल पैक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन् एनसेल नेपालकै लागि

0: नवरत्न कुल ओइलको 2 मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाइ, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर 1 कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: यही सुनो
2: के कहै छे,
1: हम जाइ छी तिरुपति ट्रेडर्स में, ओइ ठाम सीजन अनुसार के सब ब्यू विजन भेटै छे, खरीद लेबे आ चलि अबे।
2: एकटा रोटावेटर के ऑर्डर सेहो दे देबे
1: हेतै।
3: तिरुपति ट्रेडर्स राजविराज।
4: जी हाँ, एहिठाम विभिन्न प्रकारक औद्योगिक मशीन उचित दाम में उपलब्ध है।
3: चप्पल बनाबे वाला मशीन,
4: मुर्गा दाना बनाबे वाला मशीन आ माछ उत्पादन के लेल कृषि औजार सामान सब,
2: पावर ट्रेलर,
4: थ्रेसर,
2: रोटावेटर,
4: कम्पाइन, धान आ गहूम काटे वाला मशीन,
2: रोपे वाला मशीन,
4: स्प्रे, मिल सेट, जेनरेटर,
2: कृषि औजार, स्पेयर पार्ट्स
4: आ बोरिंग सामान संगे घर निर्माण आ हार्डवेयर संबंधी संपूर्ण सामान उपलब्ध है।
3: तिरुपति ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स, कंचनपुर रोड, राजविराज 8,
4: प्रोप्राइटर अशोक कुमार यादव।
3: मोबाइल
4: 9807788897 आ 9847552178।
5: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz।

0: एखन भोरकवा एफएम में दिन के एक बाजल राज विराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल अछि।
1: जो एहन कोनो समस्या अछि तो निक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
0: याद राखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
1: फोन नंबर 9808 11 978।
2: फिरता फिरता 20% समकेश फिरता
3: जैले पानी चाहा पानी
4: कैश फिरता लिनु भए त
5: एनसेल पैक किन्नु भए त
6: जैले पानी जहाँ पानी पैक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म कैश फिरता एनसेल ऐप मा क्लेम गर्नुहोस्।
7: एनसेल पैक किन्नु भए त
8: शर्तहरू लागू हुनेछन्।
7: एनसेल नेपालकै लागि।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
1: अपांगता भेल व्यक्ति, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक आ बिरामी के विशेष ध्यान देबाक चाही।
2: आइ काल्हि अत्यधिक गर्मी आ गरम हवा चल वाला समय अछि। ताइ एहन अवस्था में जर एनाय, उल्टी जका लगनाय, थकान लगनाय, बेसी प्यास लगनाय, धड़कन बढ़नाय, श्वास प्रश्वास में समस्या भेनाय, अत्यधिक माथ दुखेनाय, बेहोश भेनाय, मांसपेशी सब दुखेनाय, उल्टी भेनाय जेहन समस्या सब देखल जा सकत अछि।
1: गरम हवा के प्रभाव तथा लू लागत से बचे वाला उपाय सब
2: जूस शरबत आदि प्रशस्त मात्रा में पियल जाओ।
1: दिन भर प्रशस्त पानी आ झोर वाला चीज सब सेवन कैल जाए।
2: हल्का ढीला आ सूती के कपड़ा सब लगावल जाए।
1: संभवतः ठंडा स्थान में बैसल जाए।
2: दोपहर के समय में अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाओ।
1: बाहर जाइए पर छाता टोपी चश्मा आ पंजा प्रयोग कैल जाए।
2: खाली पेट बाहर नहीं जाओ।
1: दोपहर के समय में कड़ा शारीरिक परिश्रम नहीं कैल जाए।
2: स्वास्थ्य संबंधी कोनो प्रकार के समस्या देखल जायत अछि तऽ स्वास्थ्य कर्मी संग नियमित संपर्क में रह अनुरोध कैल जायत अछि। सबल नेपाल आ समावेशी अपांग संग सप्तरीक साझेदारी तथा CBM ग्लोबल के सहयोग में संचालित अपांगता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना द्वारा जनहित में जारी संदेश।
3: अपने साथ रहिए बोलकबा FM।

0: So sitta ima.
1: Mama shanga halka ja mailo. Na.
2: Aye kaniya, aha ka gahna bara sundar ya. Designo naya kata baneliye.
3: Aye, Kavya Jewelers Raj Viraj ma baneliye. Ota aadhunik design ka sona chandi ka gar gahna, order bamojim ka gahna, guarantee ka saath banboi chhi. Aa navgraha ka patthar seho bhetai chhai.
4: Kavya Jewelers राजविराज साथ मेन रोड अदालत के पूर्व प्रोप्राइटर सोनी कुमारी साह आ सुनील साह मोबाइल 98 97 40 445।
5: सम्पूर्ण सुविधा सा सम्पन्न यूनिक अस्पताल रायपुर रुपनी आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज
6: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान वीर अस्पताल काठमांडू एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करैत अछि।
5: एहिठाम महिला स्त्री एवं प्रसूति पुरुष आ बाल रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि।
2: सेवा आ सुविधा सब
6: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा ओपीडी मेडिसिन सेवा
2: ऑपरेशन सेवा चर्म रोग हार्ट जर्नी डायबिटीज
6: होल बॉडी जांच सिटी स्कैन आईसीयू एनआईसीयू ओटी
5: डिजिटल एक्सरे एसी नॉन एसी कैबिन के सुविधा है।
2: संपर्क कर जाए
6: यूनिक अस्पताल रुपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक।
2: फोन
6: 031-530-7776
2: मोबाइल
6: 98015-608-00 आ एम्बुलेंस के नंबर 98015-56205 98015-56202।
7: फिरता फिरता 20% समके आसु फिरता
8: जैले पनी चाहा पनी
9: क्याश फिरता लिनु भायता
10: एनसेल पैक किन्नु भायता जैले पनी जहाँ पनी पैक खरीद गर्न होस अनि 20% सम्म क्याश फिरता एनसेल एप मा क्लेम गर्न होस। एनसेल पैक किन्नु भायता सर्थहरु लागू हुने छन्। एनसेल नेपालकै लागि।
2: यता कोनो सुविधा सम्पन्न जगह नै छै
11: छैन त कृष्णा पार्टी प्यालेस एन्ड लज राजविराज ओइठाम हरेक शुभ कार्य विवाह मुंडन हरेक दृष्टि कोण सँ सुविधा सम्पन्न छै।
5: राजविराज के साथ कृष्णा पार्टी पैलेस नाम
6: अपने शहर राजविराज में सुविधा संपन्न कृष्णा पार्टी पैलेस एंड लॉज
5: हर एक शुभ कार्य शुभ विवाह उपनयन मुंडन आ पार्टी के लिए सुविधा संपन्न
6: कृष्णा पार्टी पैलेस एठम आकर्षक सजावट सहित एसी नॉन एसी डिलक्स आ कॉमन रूम
5: 24 घंटा बिजली सुविधा स्वच्छ खाने पानी
6: शांत वातावरण में विवाह स्थल सेमिनार तालीम हॉल के व्यवस्था है।
5: टेबल कुर्सी आ कैटरिंग के व्यवस्था
6: बुकिंग के लिए संपर्क करी कृष्णा पार्टी पैलेस एंड लॉज 33 राजविराज 70
5: मोबाइल
6: 98047-48-454 आ 98428-22430।

0: नवरत्न कुल ओइलको दुई मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाइ, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: एकटा खुसीको खबर छौ।
2: कथि छौ?
1: विदेश से छुट्टी में आयल आदमी सब के श्रम स्वीकृति के काम अब राज विराज में चालू भ गेल छी। आंख के फोटो आ फिंगरप्रिंट के लेल कतौ बाहर नहीं जा पड़तो।
3: जी हाँ, अली कम्युनिकेशन
4: एहिठाम विदेश जेबाक लेल श्रम स्वीकृति के काम, देश विदेश के लेल हवाई टिकट बुकिंग आ टिकट के डेट चेंज, भारत के लेल रेलवे टिकट बुकिंग,
3: विदेश जेबाक लेल ओरिएंटेशन कक्षा, मेडिकल जांच, कतार आ दुबई के लेल विजिट वीजा एवं विदेश में चिट्ठी पत्र पठेबाक लेल कुरियर सेवा उपलब्ध अछि।
4: नया पासपोर्ट बनेबाक लेल ऑनलाइन केनाइ आ विदेश जाय वालाक लेल राष्ट्रीय परिचय पत्र के फ्री ऑनलाइन फॉर्म भरनाय के संगे हरेक कंपनी के मोबाइल थोक दर में बिक्री आ मरम्मत करैत अछि।
3: संपर्क
4: अली कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल्स, चतुर्भुज मार्केट, मेन रोड, लोहार गली, राजविराज 4, 70।
3: फोन
4: 0315325575।
3: मोबाइल
4: 9801502475।

हाई हेलो नमस्ते प्रणाम श्रोता साथी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम भरकवार रंगमंच में अहम छी अपने सके प्रिय सहकर्मी मुंचन प्रिया तजी श्रोता लोकन सभक बोली सभक प्रीत अछि भरकवार सभक मित 92.8 मेगा हर्ज के तरंग पर अखन अपने सब सुन रहल छी दुपहरिया कालीन कार्यक्रम रंगमंच आ ई कार्यक्रम अपने सब प्रत्येक रवि दिन सँ शुक्र दिन धरि दिनक 2 बजे से 3 बजे तक अपने सब 1 घंटा धरि सुन सकै छी आ ई कार्यक्रम में हम सब सुंदर सुंदर गीतनाद लऽ कऽ एबे करब आ मनोरंजन करेबे करब आ बेसी से बेसी हम सब बातचीत करे के कोशिश में रहबे करै छी तऽ जी श्रोता लोकन अपने सब जुड़ल रही टेलीफोन माध्यम सँ आ अपन कला प्रतिभा देखा सकै छी अपन लिखल रचना कैल गीत गजल सुना सके छी स्टूडियो के नंबर रहल अछि 0135317 में जुड़ल रही सीमा ओहि पार रही छी तऽ कोड नंबर डायल क 0097731531717 में से अपने सब नीक जकाँ बातचीत कर सके छी आ तहिना अखन अपने सब भरक एफएम के यूट्यूब चैनल पर ई कार्यक्रम लाइव देख सके छी सुन सके छी आ संगे लाइक कमेंट शेयर सेहो कऽ सकै छी तऽ जी श्रोता लोकनि अपने सब जुड़ल रही आ लाइक कमेंट शेयर जरूर करैत रही चलिए हम सब बातचीत करबे करब आजुक कार्यक्रम के शुरुआत कर रहल छी अपने सबक लेल एकटा सुंदर सन गीत सँ

0: उगियो चौठी चान साझू के बेरिया जी, बहुत सुंदर सन चौरचन पावनि के गीत सुनलहुँ। चौरचन पावनि अपना सबके सेहो सब साल मनबै छी, इहो साल आबि गेल छै, अपने सबके बहुत बहुत शुभकामना। चौठी चान सेहो कहै छी हमसब चौरचन पावनि, अपने सब नीक जकाँ मनायब। बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक मंगलमय शुभकामना। सुंदर सन गीत रखलहुँ, अपने सबके जरूर नीक लागल हैत। आ एने एने सुंदर सुंदर गीत नाद हमसब लऽ कऽ एबे करब। चली अखन केओ कलर आबि गेल छथि, के छथि, कतऽ सँ? हेलो,
1: हेलो, नमस्ते, नमस्कार मिथुन प्रिया जी।
0: जी नमस्ते, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। इसके बजे छे अपने?
1: हम लोजरा से।
0: लोजरा से शंकर जी, जीवत जी, जीवत जी, की हाल चाल है?
1: एकदम बढ़िया है, मौसम बढ़िया है, कुल कुल मौसम है
0: जी, ठंडा ठंडा मौसम छे है ना। हां,
1: गाछ पर में चल छी
0: जी जी,
1: एकदम पूर्वा हवा लगा रहल छी कार्यक्रम सुन छी कार्यक्रम का।
0: जी जीवा जी, की सुनाय भाई?
1: सस्ता जिंदगी।

0: कहा बिन हमर जिंदगी कोना कटत, जेना छाती करे जा धक धक करे, जेना छाती करे जा धक करे। दुनिया डरबे तो डरबे हम कोना डरबे, कन हसियो न
1: जी। बहुत सुंदर सुनेलो, मन पर चाहब साथी सबके तो मन पार लिया।
2: सबसे पहले आदम गोटे के हृदय दिल से याद करी छी,
1: धन्यवाद
2: राज विराज के भोला जी। एकर बाद में जे आहा के जे हमर महेश ठाकुर जे है उनका विशेष करके मलबई नदी पर उनकर भाई के गर्वन में राजा राम जी उनका, एकर बाद में जे शंकर जी उनका, एकर बाद में तेसरा मुखिया हरदिया कर दिया उनका, एकर बाद में ये दम्मर जी श्री के, एकर बाद में ये भूपन भुवन पट्टी के गोपाल सरदार गोदरा के हरनरे जी और जीवन शाम चुकना
1: जी। अपने फोन केलहुँ ताहिके लेल बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए तो हमसभके जीवत जी लोहजारा सब फोन केने छलथि, तऽ जी श्रोता लोकनि अहिना अपने सब सङ्ग दैत रही, जुड़ल रही। चलिए अखन केओ कलर आबि गेल छथि, के छथि, कतयसँ हुनका स्वागत करी। हेलो
3: हेलो दीदी, प्रणाम करै छी, गोर लागै छी, नमस्ते नमस्कार कए रहल छी।
1: जी नमस्ते नमस्कार, प्रणाम। महेश जी की हाल चाल अछि?
3: हाल खबर बहुत बढ़िआँ यऽ दीदी, अहाँ अपन सुनाबू। अहाँके एकटा चीज आओर कहै छी, शुभकामना दए रहल छी दीदी अहाँके, जते दीदी बहन जे काल्हिमा जे तीज पाबनि चौरचन पाबनि
1: तीज आ चौरचन पाबनि के बहुत बहुत शुभकामना
3: दए रहल छी, हर जते सुने देते सीमा एहि पार सीमा ओहि पार सँ समुन्दर पार तक के सबके शुभकामना यऽ तीज पाबनि के या चौरचन पाबनि के शुभकामना दए रहल छी।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। आरो किछु सुनायब महेशी?
3: गी हमें क्या सुना दी, चुटकीला है या शायरी किसे सुना दी?
1: जी जी सुना जाए।
3: फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, अब रुकवा एफएम में तमाम मित्र को तमाम श्रोता सबके दोस्त सब के इंजॉय लीजिए, रंग मंच कार्यक्रम में मुनचुन दीदी के प्रणाम करिए, प्रणाम करिए।
1: जी जी बहुत सुंदर। महेश जी,
3: जी दीदी,
1: बहुत सुंदर सुनेलो, याद करो चाहब साथी सबके तो याद कर लिया।
3: सबसे पहले अहाँ के दीदी जीवस बाबा का गोर लागे छी, नमस्ते नमस्कार प्रणाम कह रहा छी। तकर बाद यह हमार साथी यह सुरेन कुमार दास यह, तकर बाद हमार भाई रमेश कुमार ठाकुर यह, शंकर मंडल यह, जिरिया हटिया का भोला सा भोला अंकल यह, तकर बाद शिवराम मंडल यह, चंदेश्वर मंडल यह, किसान बाबू रामफल मुखिया यह, गुरकुन सा यह, मंजय गिरी भाई जी यह, रूपेश कुमार यादव यह, रोशनी कुमार यादव यह, बबीता मंडल सुनोली रोड का यह, राजीव दास यह, मंजीर मंजू देवी यह, राजेंद्र प्रसाद यादव यह, शौकत अली भाई जी यह, रहमत अली यह, अजमत भाई जी यह, बरकत अली यह गोल बाजार का, नाथ बाबू यह सीमावे पार का, धीरू पासवान यह सीमावे पार का, राजेंद्र मंडल यह सीमावे पार, दिलीप सा यह पानीपुरी वाला, आ शंभू गुप्ता यह, दिलीप सा या पानीपुरी वाला हमरा चिन्हे नहीं चिन्हे सम्पूर्ण श्रोता का, लेकिन ये खास रात बजनाथ भाई जी के लागे।
1: जी अपने फोन केलहुँ ताहिके लेल बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए हमसभके महेश जी अखन राज विराज सब फोन केने छलथि, तऽ जी श्रोता लोकनि अहिना अपने सब सङ्ग दैत रही, जुड़ल रही। चलिए अखन केओ कलर आबि गेल छथि, के छथि, कतयसँ? हेलो
4: हजुर नमस्कार, चौठी चाँद के शुभकामना।
1: जी नमस्ते नमस्कार, प्रणाम बाबा, की हाल चाल अछि?
4: बहुत बढ़िया, अपने सबके दंदाना छिए।
1: हमरो सबके बड़ बढ़िया, बड़ सुंदर अछि। चौठी चाँद के जीती चौरचन पावन के बहुत बहुत शुभकामना अपनों के, हमरा सबके भरुकवा टीम के दिस सब बाबा।
4: हजुर
1: आइ की सुनायब?
4: रौद बड़ छै सुनाबै छी, सोचल छियै आ मैया के नाम लै छियै, मैया कत सुतल की कौन सगन बन झारी में, हम छी दुख कर पेटारी में ना, मैया का सु

हमची बल बुद्धि पी गाहिल हमरा सना किया नदीन मैया किया फसेलो।

0: हमरा ये दुनियादारी में हम की दुखत पेचारी में हजूर भ गेलै हजूर
1: जी बहुत सुंदर सुनेलहुँ बाबा, याद करै छी आप साथी सबके तऽ याद कऽ लिअ।
0: सबसँ पहिले अपने प्राविधिक बाबू लगाए समत दुर्गा एफएम परिवार के
1: धन्यवाद,
0: शुभकामना
1: धन्यवाद।
0: और से की कहै छै जे माता राजदेवी सखरा माता के आशीर्वाद से समस्त दुर्गा एफएम परिवार के दुनू हाथ जोड़ के प्रणाम करै छी। और हम समझे रहल छी हमर से राजेंद्र कतौ हराल छै ओकरो समझैत, और हमर निसंगम चलर के मास्टर अकबर अली बीएच चलर के परिवार महेश बाबू शौकत बरखत हमर मैथिली नवकार सरजू भैया पसपन चलर सब बिंदल के समझैत, काली मंदिर टोल से रामचंद्र रजक श्याम रजक राजदेवी रोड से डॉक्टर श्याम मंडल सर चाय दुकान से राम कुमार भैया हिमालय रेस के मिल लग से चाय नाता दुकान से महेंद्र भैया विजय भैया शौकत काकी कब्जा दुकान से दुकान सब वीरेंद्र गुप्ता के समझैत, और पानी टंकी चौक से और के की कहै छै जे रुकनी बस स्टैंड से विजय भैया भरत बाबू पान टंकी चौक से जितेंद्र बाबू महेश बाबू के समझैत
1: जी। अपने फोन केलहुँ ताहिके लेल बहुत बहुत धन्यवाद। हमर सबके रामदेव बाबा जी अखन राजविराज खरसाल टोल से फोन केने छलथि, जी श्रोता लोकनि अहिना अपने सब संग देत रही जुड़ल रही एक घंटा धरि अपने सब से भरपूर बातचीत अहिना करबे करब। चली अखन केओ कलर आबि गेल छथि के छथि कतऽ सँ हेलो हेलो
2: नमस्ते दी
1: जी नमस्ते नमस्कार बहुत बहुत स्वागत अछि के बजै छी अपने
2: अपने रानी सा
1: रानी जी कतऽ सँ राजविराज सँ की हाल चाल रानी जी
2: ठीक छै
1: चौरचन पाबनि के बहुत बहुत शुभकामना जी धन्यवाद की सुनेबै रानी
2: हम गीत सुना दै छी
1: जी सुनाएल जाए
2: घर मंदिर से नहीं हो कम तुम रख दो जहाँ पर कदम स्वागतम स्वागतम
1: जी जी बहुत सुंदर सुनेलो याद करे चाहब साथी सबके याद कर लिया
2: चिन्हे वाला सब साथी सबके
1: जी अपने फोन केलहुँ ताहिके लेल बहुत बहुत धन्यवाद। हमर सबके रानी जी अखन राजविराजसँ फोन केने छलथि, तऽ जी श्रोता लोकनि अहिना अपने सब सङ्ग दैत रहै छी जुड़ल रहै छी बहुत बहुत खुशी लागैए अहिना सङ्गमे रही एक घंटा धरि दू बजेसँ तीन बजे धरि अपने सबके साथमे रहब आ अहिना भरपूर बातचीत हमसब करबे करब। चली अखनके समय भऽ गेल छै एकटा सुन्दर सन गीत बजेबाक आ गीतक बाद हमसब अयबे करब, चली गीतसँ आनन्द ली।

0: ताहे प्यार जी श्रोता लोकनि बहुत सुंदर सन गीत सुनलो, अपने सबके जरूर निक लागल हैत। आ एने एने सुंदर सुंदर गीतनाद हम सब लक एबे करब आ मनोरंजन करेबे करब आ बेसी से बेसी हम सब बातचीत करे के कोशिश में रहबे करे छी। ता जी श्रोता लोकनि अपने सब जुड़ल रही टेलीफोन माध्यम से आ अपन कला प्रतिभा देखा सके छी। चलिए अखन केओ कलर आबि गेल छथि टेलीफोन लाइन में, के छथि कतऽ से? हेलो
1: नमस्ते
0: जी। नमस्ते, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। के बजे छे अपने?
1: शंभू गुप्ता, राजगा, सिरा रोड।
0: शंभू जी की हाल चाल है?
1: सब ठीक है। यहाँ गया दे रही है बीच में कार्यक्रम सुने का मन रहे।
0: जी जी, कनी तबियत खराब भ गेल छले तेसने आब चलिए। ये मौसम जो खराब छे ना खान वही के वजह से
1: सबके तबियत खराब है।
0: जी जी, चलिए शंभू जी की सुनाब? आए
1: हम गाने सुना देती
0: जी, सुनाल जाए।

0: बारिश में सोला भरकने लगा, तो तड़पने लगा, हे हे यू मचलने लगा, तो तड़पने लगा, यू मचलने लगा, हो रहा है ये नशा, आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लिया दीदी।
1: जी बहुत सुंदर सुनेलो, मन पर चाप साथी सबके तो मन पर लिया। धन्यवाद
0: टेक्निशियन जी के,
1: हमको दिस धन्यवाद।
0: डॉक्टर का मंजे गिरी महेश ठाकुर, रमेश ठाकुर, राजीव दास तत्वावधार से, गुरुकुन भोला साहब, दिलीप का पानीपुरी वाला, दिलीप का मलसिया वाला, रामफल मुखिया हाथी से, शिवराम मंडल, शंकर सब, कविता मंडल, कुंडली मोड़ से, रूपेश मंडल कुंडली मोड़ से, मंजू देवी से, सब चीने वाला सब साथी से।
1: जी अपने फोन केलहुँ ताहिके लेल बहुत बहुत धन्यवाद छल हमर सबके शम्भुजी अखन राज विराजसँ फोन केने छलथि। तऽ जी श्रोता लोकनि अहिना अपने सब सङ्ग दैत रही, जुड़ल रही। चली अखन केओ कॉलर आबि गेल छथि, की छथि, कतयसँ? हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्ते, नमस्कार।
2: नमस्कार,
1: बहुत बहुत स्वागत अछि इस कार्यक्रममे, के बजै छी अपने?
2: हम सप्तरी राज विराजसँ संतोष गुप्ता।
1: संतोष जी, की हाल चाल अछि?
2: हेलो,
1: की हाल खबर है संतोष जी?
2: बड़ बढ़िया, बड़ सुंदर, अपन कहू और प्राविक भाई के कहू।
1: हमरो सब के बड़ बढ़िया, बड़ सुंदर है। चौरचन पावन के बहुत बहुत शुभकामना संतोष जी।
2: आपके शुभकामना पूरा भुरकबा टीम के, और
1: जी धन्यवाद। की सुने भाई?
2: ये एकटा गीते गुनगुना देबे छिले।
1: जी सुनल जाए।
2: सीता जिसके लिए जिसके मरता, जिसके लिए जिसके मरता, जिसके प्यार
1: जी बहुत सुंदर सुनेलो। मन पर चाप साथी सबके तो मन पर लिया।
2: सबसे पहले और प्राविक जी के
1: धन्यवाद,
2: और सीमा ए पार ओ पार अखन जतेक अहाँके ई कार्यक्रम सब सुन रहल यऽ साथी सब, सबके लागे कहलहुँ दीदी।
1: जी जी,
2: अपना सब तऽ मिथिला वासी छियै, है ना?
1: जी जी जी, मिथिला वासी छी।
2: गणेश जी के पवनी छियै, है ना?
1: चौठी चांद, चौरचन पावनि आ तीज सेहो छै। जी
2: गीत गुनगुना देतियै ने चौरचन, हमरो सबके नहि बुझल यऽ कोन गीत होइ छै, है ना?
1: चौरचन पावन के गीत हम कार्यक्रम के शुरुआते में सुने ना चलो। अपने जी जी, अपने नहीं सुन लिए शायद की कोना।
2: जी तब नहीं सुनने है।
1: जी जी, शुरुआते में बजे ना चले।
2: जी
1: जी जी, चलो अपने फोन के लोग तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए हमर सबके संतोष जी अखन राज विराजसँ फोन केने छलथि। जी श्रोता लोकनि अहिना अपने सब सङ्ग दैत रहै छी, जुड़ल रहै छी, बहुत बहुत खुशी लागैए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अखनके समय भऽ गेल अछि एकटा सुन्दर सन गीत बजेबाक, आ गीतक बाद हमसब जायब एकटा छोट छीन व्यावसायिक विश्राम दिस, आ विश्रामके बाद हमसब पुनः अपने सबके सेवामे उपस्थित हेब बेटा करब। मुदा अपने सब रेडियो छोड़ि कऽ कतौ नहि जायब, सुनैत रहब भरकपा FM 92.8 MHz।

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ से बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राज विराज में चल रहा है। फिल्म हनुमान अंश
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी से प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश
0: राज विराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल है।
2: जो एहन कोनो समस्या अछि त नीक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
0: याद रखू सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
2: फोन नंबर 9800111978।
3: हे कनिया अहाँ के गहना बड़ा सुंदर या डिजाइनो नया कतो बनेलिए?
4: हे काव्या ज्वेलर्स राज विराज में बनेलिए ओत आधुनिक डिजाइन का सोना चांदी का गर गहना ऑर्डर बमोजिम का गहना गारंटी के साथ बनबे आ नवग्रह का पत्थर सेहो भेटे छे।
5: काव्या ज्वेलर्स राज विराज साथ मेन रोड अदालत के पूर्व प्रोपराइटर सोनी कुमारी साह आ सुनील साह मोबाइल 9817404545।
6: भौजी बहुत टेंशन में छे की भ गेल
3: की हेते देखू ना केन बॉक्स पलंग खरीद के आनलक है जे नोट कसते कसते सब टूट गेल।
6: सुनू जय श्री हनुमान ट्रेडर्स में बहुत मजबूत बॉक्स पलंग भेटे छे खरीद के आन लिया आ वही ठाम सब सामान भेटे छे।
3: ओत की सब तैयार करे छे यो
6: बॉक्स पलंग 3 पीस आ 2 पीस दराज सोफा सेट डाइनिंग टेबल कुर्सी अलना ड्रेसिंग टेबल बाघ पंजा सोफा सेट।
4: जी हाँ शादी विवाह आ ऑफिस के लेल संपूर्ण सामान आधुनिक मशीन से कंप्यूटर के डिजाइन अनुसार फर्नीचर तैयार कैल जाए छे।
6: 5x6 फीट के फुल बुटा के बॉक्स पलंग शादी सेट 35,000 आ 6x7 फीट के शादी सेट बॉक्स पलंग 45,000 में भ जाए। संगे मॉडल किचन खराज कार्विन के व्यवस्था छे पलाई फॉर्मिका रेडीमेड ढोका हैंडल हत्था कांटी कब्जा स्प्रिट चपरा आ शीशा लगात फर्नीचर के संपूर्ण सामान उपलब्ध।
4: प्रोपराइटर शंभु सुथियार
6: जय श्री हनुमान ट्रेडर्स राज विराज 1 कंचनपुर रोड नहर चौक चूड़ा मिल के बगल में।
4: मोबाइल
6: 9807404070 आ 9868662070।
7: फिरता फिरता 20% समकेश फिरता सही पानी चाहा पानी
8: कैश फिरता लिनु भयता
9: एनसेल पैक किन्नु भयता जहिले पनि जहाँ पनि पैक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिरता एनसेल एप मा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल पैक किन्नु भयता शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: आफ्नो कुल ओइलको दुई मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाइ, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: कतेक दर्द करै छै, ठेहुन भीने आ नस फुलि जाइ छै।
2: की भ गेला से?
1: ओ बौआ, नस फुलि गेलै आ ठेहुन के जोर से दर्द करै छै।
3: आब चिंता नहि करब, चलब मंडल जी के क्लिनिक राजविराज मे।
2: डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल से जांच करा दै छियै।
4: रौ, आ हमर डाढ के नस बड़ दुखाइया बारे, ठीक भ जतै न?
2: पूरे ठीक भ जतै।
5: जी हाँ, हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल, MBBS, MS।
6: हर प्रकारक टूटल हड्डी जोड़नाए, प्लास्टर, ऑपरेशन आ नस रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि। संपर्क कैल जाए।
5: हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल, नर्मदा अर्थो केयर सेंटर, राजविराज, नेता चौक दक्षिण, हीरा फार्मेसी।
6: मोबाइल 9847996749 आ 9817930096।
7: आप अपने निवास सप्तरी सेवा आश्रम वेटनरी अस्पताल सब पश्चिम 2400 घंटा लैब आ फार्मेसी सुविधा के साथ सेवा दर आल।
8: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz।

0: जी श्रोता लोकन, ई छोटछिन व्यावसायिक विश्राम के बाद पुनः अपने सबके स्वागत है इस कार्यक्रम भरकवा रंगमंच में। हम छी अपने सबके प्रिय संगी जन प्रिया। तो जी श्रोता लोकन, अपने सबके संग में रहब एक घंटा धरि, दू बजे से तीन बजे धरि, आ निश्चित रूप से अपने सभी कार्यक्रम सुनत हे। तो अहिना संग दैत रही, जुड़ल रही आ कार्यक्रम के आगाँ बढ़ावत रही, आ बेसी से बेसी हम सब बातचीत करे के कोशिश में रहबे करे छी। तो जी श्रोता लोकन, अपने सब जुड़ल रही टेलीफोन माध्यम से, आ अपन कला प्रतिभा देखा सके छी, अपन लिखल रचना कैल गीत गजल कविता चुटकुला शायरी आदि अपने सब सुना सके छी। स्टूडियो के नंबर रहा है 0315137717 में अपने सब जुड़ल रही, आ सीमा पार रहे छी। तो कोड नंबर डायल कर 0097731531717 में से अपने सब बातचीत कर सके छी। चलिए अखन क्यों कलर आबि गेल छथि, के छथि, कतऽ सँ? हेलो जी, नमस्ते, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, के बजे छी अपने?
1: बहुत बहुत नमस्कार, कोलारी शंकर मंडल प्रिया जी, की हाल खबर?
0: शंकर जी, जी हमरा सब के बड बढ़िया, बड़ सुंदर है, अपने सुनाओ।
1: चौरचन पावन के शुभकामना दै छी सब पूरा टीम के।
0: जी धन्यवाद, अपनों के चौरचन पावन के बहुत बहुत शुभकामना। जी जी धन्यवाद शंकर जी।
1: जी और खबर?
0: जी बड़ बढ़िया, बड़ सुंदर, की सुनाब आई?
1: की सुनाब? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा
0: कर लिए। चलो याद करे छ आप साथी सबके, तो याद कर लिया
1: सास बना दुला के टीम में बोलता सब हम कसा सब के याद कर।
0: धन्यवाद।
1: ओकर बाद जे से मैं ठाकुर के दुकान पर से करे छी अखन फोन, तो मैं जी भेल, रमेश जी भेल, भोला साहब भेल, मंजे गिरी भेल, जामल राणा भेल, शोकत जी, रहमत जी, छोटू जी, गोल बाजार से जे छे से अहाँके बरकत जी, ओकर राजेंद्र मंडल बिना पक्ष, आ ओकर बाद जे छे भेली से राजेंद्र यादव जी, आ ओकर बाद जे छे कोलारी से अथी बैनाथ मंडल जी, आ ओकर चंद्रमा बोलू राजा चंद्रमा, ओकर अपने के एफएम जते सुनले सब हमर शुभकामना रहत।
0: जी अपने फोन केलहुँ तक लेल बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए हम सबके शंकर जी अहिना अपने सब जुड़ल रहै छी, बातचीत करै छी, बहुत बहुत खुशी लागैए, बहुत बहुत धन्यवाद। तहिना चली अखन साथी सब जुड़ल छथि आ कमेंट सब लिख कऽ पठेने छथि। शम्भू सुतिहार जी जुड़ल छथि, लिखे छथि, हाय हेलो नमस्ते प्रिया दीदी, बहुत सुंदर गीत बजलिए, हम जयश्री हनुमान फर्नीचर उद्योग राजविराज सप्तरी सँ छी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने कमेंट केलहुँ तक लेल। अहिना अपने सब जुड़ल रहै छी, लाइक कमेंट करै छी, बहुत बहुत खुशी लागैए। तहिना हमरा सबके अरविंद सरदार जी जुड़ल छथि, लिखे छथि, हाय हेलो गुड आफ्टरनून प्रिया दीदी, हम अखन काठमांडू से अहाँके लाइव कार्यक्रम सुनि रहल छी, आ बड़ नीक लागैए हमरा ई कार्यक्रम के लिखने छथि, आ चिन्हैवला नहि चिन्हैवला सब साथी सबके समझै लए चाहै छी, कहि लिखने छथि। जी बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, अपने कमेंट केलहुँ तक लेल, बहुत बहुत खुशी लागैए जे अपने सब जुड़ल रहै छी, कार्यक्रम के अतिक पसंद करै छी, लाइक करै छी, आ कमेंट करैत रहै छी मिठगर मिठगर, बहुत बहुत खुशी लागैए, बहुत बहुत धन्यवाद। तहिना हमरा सबके मिथिलेश जी, मिथिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, रिंकू शर्मा जी के मन पारने छथि, बहुत बहुत धन्यवाद अपने सब गोटे के, अहिना अपने सब जुड़ल रही, आरो कमेंट हम सब आगाँ पढ़ कर सुनेबे करब। चलिए हम सब बातचीत करबे करब, अखन के समय भ गेल छै सुंदर सन गीत बजेबाक, तऽ चलिए गीत सँ आनंद ली।

0: एखन अपना सबके मिथिलावासी के महान पावनि चौरचन पावनि जकरा चौठी चान सेहो अपना सब कहै छी, तऽ चौठी चान चौरचन पावनिके बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक मंगलमय शुभकामना। अपने सब गोटे के नीक जकाँ मनायब आ गणेश जी के पूजा आजा के साथ हमसब ई पावनि मनाबै छी। पूरी पकवान विभिन्न किस्म का पाक पकवान सब अपना सब बनबै छी, अपने सब नीक जकाँ मनायब। चलिए अखन केओ कलर आबि गेल छथि टेलीफोन लाइन में, की छथि कतऽ सँ, हेलो।
1: प्रेम के गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम के गली में हो, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, गलिया नाम लेना कहीं काटो।

तेरे आंखों से सारा संसार मैंने पाऊंगी, देखूंगी उस पार या उस पार मैं देखूंगी, मैं मौत को तेरा ही दर्शन होगा, रिम जिम बरसता सावन होगा।

0: होगा ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। लागल प्रिया जी?
1: जी बहुत सुंदर सुनील हो राजेंद्र जी, बहुत निक लागल। चौरचन पावन के बहुत बहुत शुभकामना आपने किए।
0: क्या भूत पूरे हॉल यूनिट के आदत्य देश विदेश दीदी दादू भाई दीदी बहन मन बैठे सबके लिए बहुत शुभकामना, ढेर सा शुभकामना
1: दीदी। जी जी तीज पावन कैसे हो?
0: जी जी
1: चलो याद करो आप साथी सबके याद करो।
0: सबसे पहला मुनसुन प्रिया जी के उत्कुलमा भैया के
1: जी धन्यवाद।
0: ससुरा मुखिया हरदिया सर राम फल मुखिया आगे सर राज विराज बड़गा पियाटिया सर सबकत अली बरकत अली रमत अली अजमत अली जमा राम हरिनारायण साह दिलीप प्रसाद सर राजीव दास सीमा पास राजेंद्र मंडल रामनाथ साह पानीपुरी वाला महेश ठाकुर रमेश ठाकुर जिरिया हटिया सर शंकर मंडल आ खास करके प्रिया जी खास के राम बाबा के कहबे जे कल तीज व्रत से करे निक से मनबे ला भोला बाबा के पूजा निक से करे ला।
1: जी ओके बाय बाय। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए हम सबके रामदेव बाबा जी अखन राज विराज खरसाल टोल सब फोन के नसल ओ राजेंद्र प्रसाद जी अखन भेली सब फोन के नसल त जी श्रोता लोग अहिना अपने सब जुड़ल रहै छी बातचीत करै छी बहुत बहुत खुशी लागैए। अहिना हमरा सबके संग देत रही एक घंटा धरि दू बजे से तीन बजे धरि आ भरपूर बातचीत हम सब करबे करब। चलिए अखन हमरा सबके जुड़ गेल छथि खेरवार पप्पू कुमार जी लिखा चाहे हाय सिंगर प्रिया दीदी आपको टिकटॉक पर देखता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब में कमेंट केना चाहे तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने के कमेंट के लिए तक लेल तहिना हमरा सके मिथिलेश जी हम दुनू आदमी गाना सुनै छी रिंकू जी आ तहिना मिथिलेश जी ई कार्यक्रम अपने सब सुनि रहल छी दुनू गोटे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खुशी लागैए अपने सब अहिना हमरा सबके संग दैत रहै छी जुड़ल रहै छी एक घंटा धरि आ लाइक कमेंट करैत रहै छी कार्यक्रम के पसंद करै छी लाइक करै छी बहुत बहुत खुशी लागैए। आ बहुत बहुत धन्यवाद अपने सब गोटे के अहिना संगमे रही या समय में जुड़ल रही अपने सब से हम सब भरपूर बातचीत हम सब करबे करब। चलिए ऐ संग संगे हम सब कार्यक्रम के अंतिम अंतिम चरण में आबि गेल छी आ विदा लेबाक समय भ गेल अछि। अपने सब बहुत रास श्रोता साथी सब अपने सब फोन क के सहभागिता जनेलहुँ अपने सबके बहुत बहुत धन्यवाद आ जे केओ रेडियो सुनकर साथ देलहुँ हुनको सबके धन्यवाद आ यूट्यूब पर जुड़ल साथी सब लाइक कमेंट शेयर क के साथ देलहुँ अपने सबके बहुत बहुत धन्यवाद दैत कार्यक्रम के अंत में एकटा सुंदर सन गीत छोड़ैत अपने सबक लेल अखन के लेल आजुक कार्यक्रम सब अपने सबके प्रिय संगी जन प्रिया के विदा दिय बेस्त नमस्कार प्रणाम बाय बाय सुनत रह भरक पाठ्यक्रम 92.8 में।

0: Media.
1: Extreme Energy Drink.
2: अपाङ्गता भेल व्यक्ति, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक आ बिरामी के विशेष ध्यान देबाक चाही।
3: आइ काल्हि अत्यधिक गर्मी आ गरम हवा चल वाला समय अछि। ताइ एहन अवस्था में जर एनाय, उल्टी जकाँ लगनाय, थकान लगनाय, बेसी प्यास लगनाय, धड़कन बढ़नाय, श्वास प्रश्वास में समस्या भेनाय, अत्यधिक माथ दुखेनाय, बेहोश भेनाय, मांसपेशी सब दुखेनाय, उल्टी भेनाय जेहन समस्या सब देखल जा सकत अछि।
2: गरम हवा के प्रभाव तथा लू लागत से बचे वाला उपाय सब
3: जूस शरबत आदि प्रशस्त मात्रा में पियल जाओ।
2: दिन भर प्रशस्त पानी आ झोर वाला चीज सब सेवन कैल जाए।
3: हल्का ढीला आ सूती के कपड़ा सब लगावल जाए।
2: संभवतः ठंडा स्थान में बैसल जाए।
3: दोपहर के समय में अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाओ।
2: बाहर जाइए परत छाता टोपी चश्मा आ पंजा प्रयोग कैल जाए।
3: खाली पेट बाहर नहीं जाओ।
2: दोपहर के समय में कड़ा शारीरिक परिश्रम नहीं कैल जाए।
3: स्वास्थ्य संबंधी कोनो प्रकार के समस्या देखल जाए त स्वास्थ्य कर्मी संग नियमित संपर्क में रह अनुरोध कैल जाए। सबल नेपाल आ समावेशी अपांग संग सप्तरीक साझेदारी तथा CBM ग्लोबल के सहयोग में संचालित अपांगता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना द्वारा जनहित में जारी संदेश।

0: कुल ओइलको दुई मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाई, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: कतेक दर्द करै छे, ठेहुन भीने आ नस फुल जाइ छे।
2: की भ गेला से?
1: ओ बुआ, नस फुल गेले आ ठेहुन के जोड़ से दर्द करै छे।
3: आप चिंता नहीं कर, चल मंडल जी के क्लिनिक राजविराज में।
2: डॉक्टर रिद्धिनाथ प्रसाद मंडल से जांच करा दे छियो।
4: रो आ हमारे डाढ़ का नस बड़ दुखाई या बारे, ठीक भ जाते ना?
2: पूरे ठीक भ जाते।
5: जी हाँ, हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिद्धिनाथ प्रसाद मंडल, MBBS, MS।
6: हर प्रकारक टूटल हड्डी जोड़नाए, प्लास्टर, ऑपरेशन आ नस रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि। संपर्क कैल जाए।
5: हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिद्धिनाथ प्रसाद मंडल, नर्मदा अर्थो केयर सेंटर, राजविराज, नेता चौक से दक्षिण, हीरा फार्मेसी।
6: मोबाइल 9847996749 आ 9817930096।
7: आप अपने निवास सप्तरी सेवा आश्रम वेटनरी अस्पताल सब पश्चिम 24 घंटा लैब आ फार्मेसी सुविधा के साथ सेवा दर आल अच्छा।

0: Mia?
1: Extreme energy drink.
2: ये सुनो
3: की कहे छे
2: हम जाय छी तिरुपति ट्रेडर्स में वही ठाम सीजन अनुसार के सब ब्यू विजन भेटे छे खरीद लेबे आ चलि अबे
3: एकटा रोटावेटर के ऑर्डर सेहो दे देबे
2: हेते
4: तिरुपति ट्रेडर्स राज विराज
5: जी हाँ एहिठाम विभिन्न प्रकारक औद्योगिक मशीन उचित दाम में उपलब्ध है
3: चप्पल बनाबे वाला मशीन
5: मुर्गा दाना बनाबे वाला मशीन आ माछ उत्पादन के लेल कृषि औजार सामान सब
3: पावर ट्रेलर
5: थ्रेसर
3: रोटावेटर
5: कम्पाइंड धान आ गहूम काटे वाला मशीन
3: रोपे वाला मशीन
5: स्प्रे मिल सेट जेनरेटर
3: कृषि औजार स्पेयर पार्ट्स
5: आ बोरिंग सामान संगे घर निर्माण आ हार्डवेयर संबंधी संपूर्ण सामान उपलब्ध है
4: तिरुपति ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स कंचनपुर रोड राजविराज 8
5: प्रोप्राइटर अशोक कुमार यादव
3: मोबाइल
5: 9807788897 आ 9847552178
6: अभी आप लोग सुन रहे हैं बोरुको FM 92.8 मेगाहर्ट्ज़

0: राज विराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल अछि।
1: जँ एहन कोनो समस्या अछि तऽ नीक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
0: याद रखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
1: फोन नंबर 9800111978।
2: फिरता 20% समस्या सफिरता सहीले पानी चाह पानी
3: कैश फिरता लिनु भए त
4: एनसेल पैक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिरता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल पैक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: कुल ओइलको दुई मिनटको मालिस ले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाई, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: सम्पूर्ण सुविधा सह सम्पन्न युनिक अस्पताल रायपुर रुपनी आ युनिक सिटी अस्पताल राजविराज।
2: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, वीर अस्पताल काठमांडू, एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करैत अछि।
1: एहिठाम महिला, स्त्री एवं प्रसूति, पुरुष आ बाल रोग संबंधी जाँच आ इलाज करैत अछि।
3: सेवा आ सुविधा सब
2: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा, ओपीडी, मेडिसिन सेवा,
3: ऑपरेशन सेवा, चर्म रोग, हार्ट जर्नी, डायबिटीज,
2: होल बॉडी जांच, सीटी स्कैन, आईसीयू, एनआईसीयू, ओटी,
1: डिजिटल एक्सरे, एसी, नॉन एसी केबिन के सुविधा है।
3: संपर्क कर जाए
2: यूनिक अस्पताल रुपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक।
3: फोन
2: 031-5370-76,
3: मोबाइल
2: 9805-60800 आ एम्बुलेंस के नंबर 9805-56205, 9805-56202।
4: एकटा खुशी के खबर छौ।
5: कथू छौ? से
4: विदेश से छुट्टी में आयल आदमी सब के श्रम स्वीकृति के काम अब राजविराज में चालू भ गेल छी। आंख के फोटो आ फिंगरप्रिंट के लेल कतौ बाहर नहीं जा पड़तो।
1: जी हाँ, अली कम्युनिकेशन।
2: एहिठाम विदेश जेबाक लेल श्रम स्वीकृति के काम, देश विदेश के लेल हवाई टिकट बुकिंग आ टिकट के डेट चेंज, भारत के लेल रेलवे टिकट बुकिंग,
1: विदेश जेबाक लेल ओरिएंटेशन कक्षा, मेडिकल जांच, कतार आ दुबई के लेल विजिट वीजा एवं विदेश में चिट्ठी पत्र पठेबाक लेल कुरियर सेवा उपलब्ध अछि।
2: नया पासपोर्ट बनेबाक लेल ऑनलाइन केनाइ आ विदेश जायवाला के लेल राष्ट्रीय परिचय पत्र के फ्री ऑनलाइन फॉर्म भरनाइ के संगे हरेक कंपनी के मोबाइल थोक दर में बिक्री आ मरम्मत करैत अछि।
1: संपर्क
2: अली कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल्स, चतुर्भुज मार्केट, मेन रोड, लोहार गली, राजविराज 4, 70।
1: फोन
2: 031-5370-75,
1: मोबाइल
2: 9805।

0: Mania Extreme Energy Drink.
1: एता कोनो सुविधा संपन्न जगह नहीं छै
2: छै ना त कृष्णा पार्टी पैलेस एंड लॉज राजविराज ओइ ठाम हरेक शुभ कार्य विवाह मुंडन हरेक दृष्टि कोण से सुविधा संपन्न छै
1: राजविराज के साथ कृष्णा पार्टी पैलेस नाम
3: अपने शहर राजविराज में सुविधा संपन्न कृष्णा पार्टी पैलेस एंड लॉज
1: हरेक शुभ कार्य शुभ विवाह उपनयन मुंडन आ पार्टी के लेल सुविधा संपन्न
3: कृष्णा पार्टी पैलेस एठम आकर्षक सजावट सहित एसी नॉन एसी डिलक्स आ कॉमन रूम
1: 24 घंटा बिजली सुविधा स्वच्छ खाने पानी
3: शांत वातावरण में विवाह स्थल सेमिनार तालीम हॉल के व्यवस्था है
1: टेबल कुर्सी आ कैटरिंग के व्यवस्था
3: बुकिंग के लिए संपर्क करी कृष्णा पार्टी पैलेस एंड लॉज तेतरीगाछी राजविराज सप्तरी
1: मोबाइल
3: 9874484454 आ 9848222430
4: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz

0: मेरी पार्टी में रंग कैसे जमेगा जब तक तुम शेर नहीं सुनाओगे।
1: हाँ कमान अरुण, कमान
0: कमान
1: अरुण यार,
2: क्या करूँ यार, आज कोई शेर ही नहीं बन रहा।
3: अरे ये क्या हुआ,
1: ये तो शम्माई बुझ गई।
3: अरे अब तो इसे खुदा ही रोशन कर सकता भाई।
1: अरे चेक करो यार, फिस तो नहीं गया।
0: क्या मालूम।
1: अरे भाई किसी के पास माचिस वाचिस है कि नहीं।
2: हाँ हाँ मेरे पास है। ये आंखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने।

0: बाढ़ के मौसम में सतर्क रहू आ सुरक्षित रहू। बाढ़ कोनो बखत आबि सकैत अछि, ताई प्रतिकार्य के लेल तैयार रहू।
1: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग DHM द्वारा नेपाल के विभिन्न भाग में औसत से बेसी वर्षा होबाक पूर्व अनुमान कयल गेल अछि, जै कारण बाढ़ आ कटान के जोखिम बढ़ सकैत अछि।
0: सतर्क रह कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करू आ स्थानीय सूचना सब के पालन करू। अहाँ के सुरक्षा अहीं के जानकारी पर निर्भर अछि।
1: बाढ़ के जोखिम भेला पर ई उपाय सब अपनावल जाओ।
0: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, वडा कार्यालय, स्थानीय सरकार तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण संबंधी जिम्मेवार व्यक्ति सब प्राप्त बाढ़ संबंधी जानकारी आ चेतावनी के ध्यान पूर्वक सुनू आ तही अनुसार उपयुक्त निर्णय लिय।
1: नजदीक रहल नदी खोला में पानिक बहाव के नियमित रूप में अनुगमन करू। नदी किनार या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बसोबास कर रहल छी त सुरक्षित आश्रय स्थल या उचगर स्थान में रहू आ सुरक्षित रूप से निकले वाला रास्ता बाट खोजू।
0: सूचना द्वारा चेतावनी जारी भेल त देर नहीं क तुरंत सुरक्षित स्थान में जेबाक लेल तैयार रहू।
1: अति आवश्यक सामान जना कि टॉर्च लाइट, मोबाइल फोन, चार्जर, दवाई, सूखा खाए वाला सामान, सफा पीबा वाला पानी, नगद रुपया, नागरिकता, पासपोर्ट लगायत अन्य प्रमाण पत्र सब झटपट झोला में तैयारी अवस्था में राखू। झटपट झोला का घर भीतर जल्दी पहुँचा वाला आ तुरंत लौ जा सके वाला स्थान में राखू।
0: अपन संपत्ति के सुरक्षा करू, संभव अछि त बहुमूल्य सामान आ चौपाया के उचगर स्थान में लौ जाओ।
1: दोसरों के मदद करू, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपंगता भेल व्यक्ति सब के आवश्यक सहयोग करू। गर्भवती, सुतकेरी आ स्तनपान करा रहल माय के लेल सुरक्षित वास के व्यवस्था करू। ओ सब के लेल सकभर अलगे आ सुरक्षित चर्पी के प्रबंध करू।
0: विपद के बाद होवा वाला सर्पदंश तथा पानी जन्य संक्रामक रोग के जोखिम रहला सँ सचेत रहू। ई सूचना परिवार, पड़ोसी आ जन समुदाय में जानकारी कराओ।
1: बाढ़ दरवाजा तक आबि जाए ऐसे पहिने तैयार रहू आ आइए से सतर्क भ जाओ।
0: ई संदेश अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र ईसी मोड अंतर्गत के हाईग्रिड परियोजना द्वारा ऑस्ट्रेलियन सरकार आ सबल नेपाल के सहयोग में प्रसारण कयल गेल अछि।
2: चेतावनी सुनू, तुरंत निर्णय लिया आ सुरक्षित रहू।
3: फिरता फिरता 20% समक्यास फिरता
4: सही पानी चाहा पानी
5: कैश फिरता लिनु भएता
6: एनसेल पैक किन्नु भएता जहिले पनि जहाँ पनि पैक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिर्ता एनसेल एप मा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल पैक किन्नु भएता शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: me a
1: extreme energy drink.
2: अपाङ्गता भेल व्यक्ति, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक आ बिरामी के विशेष ध्यान देबाक चाही।
3: आइ काल्हि अत्यधिक गर्मी आ गरम हवा चलो वाला समय अछि। ताई एहन अवस्था में जर एनाई, उल्टी जका लगनाय, थकान लगनाय, बेसी प्यास लगनाय, धड़कन बढ़नाय, श्वास प्रश्वास में समस्या भेनाय, अत्यधिक माथ दुखेनाय, बेहोश भेनाय, मांसपेशी सब दुखेनाय, उल्टी भेनाय जेहन समस्या सब देखल जा सकत अछि।
2: गरम हवा के प्रभाव तथा लू लागे से बचाव वाला उपाय सब
3: जूस शरबत आदि प्रशस्त मात्रा में पियल जाओ।
2: दिन भर प्रशस्त पानी आ झोर वाला चीज सब सेवन कैल जाए।
3: हल्का ढीला आ सूती के कपड़ा सब लगावल जाए।
2: संभवतः ठंडा स्थान में बैसल जाए।
3: दोपहर के समय में अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाओ।
2: बाहर जाइए पर छाता टोपी चश्मा आ पंजा प्रयोग कैल जाए।
3: खाली पेट बाहर नहीं जाओ।
2: दोपहर के समय में कड़ा शारीरिक परिश्रम नहीं कैल जाए।
3: स्वास्थ्य संबंधी कोनो प्रकार के समस्या देखल जाए तो स्वास्थ्य कर्मी संग नियमित संपर्क में रह अनुरोध कैल जाए। सबल नेपाल आ समावेशी अपांग संग सप्तरीक साझेदारी तथा CBM ग्लोबल के सहयोग में संचालित अपांगता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना द्वारा जनहित में जारी संदेश।
4: एखन भोरकवा FM दिन के 5 बाजल।

हाई हेलो गुड इभिनिङ, स्वागत अछि भरकपा एफएम बेरानबे दशमलव आठ मेगा हर्ट्ज के तरंग पर गुंज रहल कार्यक्रम हेलो भरकपा लऽ आबि गेल छी। हम सीमा प्राविधिक मे साथ दऽ रहल छथि अमित जी। श्रोता मित्र, कार्यक्रम अहाँ सब सुनि सकै छी प्रत्येक रवि दिन सँ लऽ कऽ शुक्र दिन धरि साँझ के पाँच बजे सँ लऽ कऽ छओ बजे तक एक घंटा धरि रहै छी अहाँ सबके संग मे। एहि कार्यक्रम के मार्फत अहाँ सब सुनि सकै छी अपन मन पसंद गीत संगीत साथी संगीत सबके याद कऽ सकै छी। डायल करब प्रथमस के स्टूडियो के नंबर 0131531717। अहाँ सब नेट के माध्यम सँ सेहो हमरा सबके संग मे जुड़ सकै छी। आ ओहिके लेल अहाँ सबके लॉग इन करऽ पड़त www.bhorakpaefm.org.np लॉगिन कऽ कऽ कार्यक्रम हेलो भरकपा के ऑनलाइन माध्यम सँ प्रसारण देख सकै छी, सुनि सकै छी आ जुड़ सकै छी हमरा सबके संग मे कार्यक्रम हेलो भरकपा मे। हमरो पात्र पर सेहो उपलब्ध अछि भरकपा एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज। श्रोता मित्र, अहाँ सबके संग मे एंड्रॉइड मोबाइल तो पक्के हेबे करत, फटाफट म्यूजिक मैथिली ऐप डाउनलोड करू आ जुड़ू हमरा सबके संग में कार्यक्रम हेलो भरकपा में। संसार के कोनो कोन से यदि अहाँ सब भरकपा एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज के तरंग पर गुंज रहल कार्यक्रम हेलो भरकपा के मार्फत से सुनना चाहे छी अपन मनपसंद गीत संगीत साथी संगीत सबके याद करे चाहे छी, कमेंट पठवा के इच्छा अछि पठा सके छी। ओहिके लेल भरकपा एफएम के यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब कऽ कऽ कमेंट पठबऽ पड़त। तऽ देखू सुनू लाइक करू सब्सक्राइब करू कमेंट करबे करू। श्रोता मित्र, सब दिन तक छोट मीठ बातचीत अहाँ सबके संग में करे चलै छी एकटा अपन मन पसंद गीत दिस। आई संडे छी तऽ श्रोता मित्र, अहाँ सबके कमेंट के माध्यम सँ पसंद कयल गेल गीत हमसब पूरा एक घंटा धरि प्ले करब। तऽ ओहिके लेल अहाँ सबके भरकपा एफएम के यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब कऽ कऽ कमेंट पठबऽ पड़त। तऽ सब दिन तक छोट मीठ बातचीत अहाँ सबके संग में करे चलै छी एकटा अपन मनपसंद गीत दिस। आइयो जायब

जी श्रोता मित्र सुनलो अखन बड़ सुंदर गीत छल हमर सबके पसंद में उम्मीद है भड़कवा एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज के तरंग पर गूंज रहल कार्यक्रम हेलो भड़कवा जतेक श्रोता मित्र सब सुन रहल छथि संपूर्ण साथी सबके निक लागल हेतन हमर सबके प्राविधिक मित्र के पसंद के गीत श्रोता मित्र आई संडे छी तऽ अहाँ सबके कमेंट के माध्यम सँ फरमाइश कयल गेल गीत हमसब पूरा एक घंटा धरि प्ले करब तऽ ओहिके लेल अहाँ सबके भड़कवा एफएम के यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब कऽ कऽ कमेंट पठबऽ पड़त श्रोता मित्र तऽ बहुत रास साथी सब कमेंट पठने छथि चलब किछु कमेंट दिस लिखने छथि मुकेश यादव सुनील जी हेलो हाय शुभ संध्या सीमा दीदी हेलो हाय शुभ संध्या मुकेश जी लिखने छथि सुबह दुपहरी पूरम एक गीत सुना दीजिए बड़े मियाँ छोटे मियाँ से कोई हमें प्यार करे हम सुनील कुमार यादव एवं मिंटू यादव कुपहा जी गणपतगंज सुपौल बिहार से कहकर लिखने छथि बड़ सुंदर अछि कमेंट एहने सुंदर सुंदर कमेंट कऽ कऽ साथ दैत रहू चलब एखन गीत दिस

बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। श्रोता मित्र बड़ सुंदर गीत छल मुकेश यादव सुनील जी के फरमाइश में इनका चिन्हवला नहीं चिन्हवला संपूर्ण साथी सबके लिए चलब पुनः किछु कमेंट दी। श्रोता मित्र अपने सबके बेर बेर याद दिला दी कि आई संडे छी। कमेंट के थ्रू पसंद कैल गेल गीत हम सब पूरा एक घंटा धरि प्ले करब तहा सब भोरकवा एफ एम के यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब कऽ कऽ अपन पसंदक गीत फरमाइश कऽ सकै छी साथी संगी सबके सेहो याद कऽ सकै छी। तो श्रोता मित्र एक छोट मीठ जानकारी के बाद चलब कमेंट दिस लिखने छथि नजीबुल्ला अंसारी जी हेलो गुड इवनिंग एक सॉन्ग सुना दीजिए ये आज हम तो हम तुम ओ सनम मिलके ये वादा करे आपको भोरकवा एफ एम सुनने वाले सभी को सुनाना चाहता हूँ कहकर लिखने छथि।

मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। श्रोता मित्र बड़ सुंदर गीत छल गुलेसी के फरमाइश में इनका छिना वाला नहीं छिना वाला संपूर्ण साथी सबके लिए चल अवकन शद्रुल मिया जी लिखने छायत। हेलो, एक सॉन्ग सुना दीजिए। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, आप सबको सुनाना चाहता हूँ। लिखने छायत दिन इंस्टेंट हाउस डीजे धमाका से लिखने छायत त्रिवेणीगंज सुपौल बिहार से सीमा जी नमस्ता जी नमस्कार, एक सॉन्ग सुना दीजिए। हमसे तो अच्छी तेरी पायल गोरी, बार बार तेरे बदन चूमे, कह के लिखने छाया। तो बड़ सुंदर है श्रोता मित्र, आप सबके कमेंट है सुंदर सुंदर, मिठकर मिठकर कमेंट करके साथ देते रहो। चलो अखन गीत दीस।

हमसे तो अच्छी तेरी पायल गोरी श्रोता मित्र बड़ सुंदर गीत छल दिनेश टेंट हाउस डीजे धमाका जी के फरमाइश में हिनका चिन्हवला नहीं चिन्हवला संपूर्ण जाति सबके लिए श्रोता मित्र चलब कमेंट दिस लिखने चाहत अरविंद सरदार जी। हाय हेलो गुड इवनिंग सीमा दीदी, हम अखन काठमांडू से लाइव कार्यक्रम सुन रहा एगो गीत सुना दू हम सफर दिल के नगर कह के लिखने चाहत। श्रोता मित्र अपने सबसे आग्रह करै छी जे साथी सब फोन कऽ सकै छथि ओ साथी सब गीत के फरमाइश संडे के गीत के फरमाइश नहि करू एहि दुआरे कि अहाँ सब तो फोन कऽ सकै छी। जे साथी सब जिनकर फोन नहि लगै छनि जे विदेश मे छथि जे सीमा ओहि पार मे छथि हुनकर सबके फोन लगबै मे कठिनाइ होइ छनि ओ सब फोन चाहियो के नहि लगा पाबै छथिन तऽ ताहि दुआरे हमसब आइ संडे के जे साथी सब फोन नहि लगा पाबै छथिन तऽ हुनकर सबहक फरमाइशक गीत आइ हमसब एक घंटा धरि प्ले करै छी। तऽ एहिमे किनको यदि गीत नहि प्ले भऽ सकय तऽ ओहिके लेल छै से अपने सबके कहय लए चाहब जे अहाँ सब फोन करब श्योर हमसब सुनेबे करब। तेना चलब कमेंट दिस लिखने छथि शम्भु सुथियार जी, नमस्ते सीमा दीदी, विश्वकर्मा बाबा के कोनो गीत सुना दिय, हम जय श्री हनुमान फर्नीचर उद्योग राजविराज एक सप्तरी सँ। पंकज जी लिखने छथि, श्रोता मित्र हेलो दीदी, हम पंकज पिपरा दिनापट्टी सँ, हमरा खातिर एगो गाना सुना दिय, गाना के नाम फूल फूल पर बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पे लिखा तेरा नाम, तुझे सलाम, ओके बाय कह के लिखने छथि। बड़ सुंदर अछि श्रोता मित्र अहाँ सबके कमेंट, एहने सुंदर सुंदर कमेंट कऽ के साथ दैत रहू। चलब एखन गीत दिस, गीत के बाद जाएब एकटा छोट मीठ कमर्शियल ब्रेक दिस, ब्रेक के बाद पुनः अहाँ सबके अपन कार्यक्रम हेलो भोरकवा में।

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ सँ बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राज विराज में चल रहा है। फिल्म हनुमान अंश
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी सँ प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश
0: राज विराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल है।
2: जो एहन कोनो समस्या अछि तो निक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
0: याद रखू सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
2: फोन नंबर 9800111978।
3: हे कनिया अहाँ के गहना बड़ा सुंदर या डिजाइनो नया कतो बनेलिए?
4: हे काव्या ज्वेलर्स राज विराज में बनेलिए ओतः आधुनिक डिजाइन का सोना चांदी का गर गहना ऑर्डर बमोजिम का गहना गारंटी के साथ बनबे छी आ नवग्रह का पत्थर सेहो भेटे छै।
5: काव्या ज्वेलर्स राज विराज 7 मेन रोड अदालत के पूर्व प्रोप्राइटर सोनी कुमारी साह आ सुनील साह मोबाइल 9817404545।
6: भौजी बहुत टेंशन में छे की भ गेल
3: की हेते देखू ना केन बॉक्स पलंग खरीद के आनलक जे नोट कसते कसते सब टूट गेल।
6: सुनू जय श्री हनुमान ट्रेडर्स में बहुत मजबूत बॉक्स पलंग भेटे छे खरीद के आन लिया आ वही ठाम सब सामान भेटे छे।
3: ओतो की सब तैयार करे छे यो
6: बॉक्स पलंग 3 पीस आ 2 पीस दराज सोफा सेट डाइनिंग टेबल कुर्सी अलना ड्रेसिंग टेबल बाघ पंजा सोफा सेट।
4: जी हाँ शादी विवाह आ ऑफिस के लेल संपूर्ण सामान आधुनिक मशीन से कंप्यूटर के डिजाइन अनुसार फर्नीचर तैयार कैल जाए छे।
6: 5x6 फीट के फुल बुटा के बॉक्स पलंग शादी सेट 35,000 आ 6x7 फीट के शादी सेट बॉक्स पलंग 45,000 में भ जाए। संगे मॉडल किचन खराज कार्विन के व्यवस्था छे पलाई फॉर्मेका रेडीमेड ढोका हैंडल हत्था कांटी कब्जा स्प्रिट चपरा आ शीशा लगात फर्नीचर के संपूर्ण सामान उपलब्ध।
4: प्रोपराइटर शंभु सुथियार
6: जय श्री हनुमान ट्रेडर्स राज विराज 1 कंचनपुर रोड नहर चौक चूड़ा मिल के बगल में।
4: मोबाइल
6: 9847004070 आ 9862866270।

0: extreme energy drink. This program is brought to you by Berger Rang Bahar.
1: Upahare Upahar.
0: Lucky Draw Bumper Ma Yamaha Razor. Berger Pens.
2: এখন আপনি সব শুন রহল ছি ভরকবা FM 92.8 মেগাহার্জ। जी श्रोता मित्र, स्वागत है शॉर्ट मिट कमर्शियल ब्रेक के बाद पुनः सबके अपन कार्यक्रम हेलो भरकबा। श्रोता मित्र, कार्यक्रम अहाँ सब सुन सकै छी प्रत्येक रवि दिन से लौकर शुक्र दिन धरि साँझ के 5 बजे से लौकर 6 बजे तक एक घंटा धरि रहै छी अहाँ सबके संग में। एहि कार्यक्रम के मार्फत से अहाँ सब सुन सकै छी अपन मनपसंद गीत संगीत साथी संगीत सबके याद कऽ सकै छी। आइ संडे छी, कमेंट के थ्रू सब पसंद कयल गीत हम सब पूरा एक घंटा धरि प्ले करब। अपनी सब भोरकबा FM के यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब कर कमेंट पठा सकै छी, अपन मनपसंद गीत संगीत के फरमाइश कर सकै छी, साथी संगीत सबके सेहो याद कर सकै छी। बेसी बातचीत दिस नहीं जाकर चलब सीधा कमेंट दिस। बहुत रास साथी सब कमेंट पठने छथि लिखने छथि। MD जुबेर जी, हेलो सीमा जी नमस्ते, मैं जुबेर आलम अभी मैं दिल्ली के रिठाला से लाइव सुन रहा हूँ। मुझे एक सॉन्ग सुना दीजिए, परदेसी तो है परदेसी, आते हैं चले जाते हैं, जामबंद परमेश्वर सोहन छोटे लाल गोविंद विजय सिकंदर जी के याद करें छत। बड़ सुंदर है श्रोता मित्र, अहाँ सबके कमेंट एने सुंदर सुंदर कमेंट कर साथ देते रहो। चलो अखन गीत दिस।
3: ये ना समझना हमको तुम्हारी याद ना आएगी,

परदेसी तो परदेसी हैं। श्रोता मित्र बड़ सुंदर गीत छल एम टी जुबेर जी के फरमाइश में इनका चिन्ह वाला नहीं चिन्ह वाला संपूर्ण साथी सबके लिए। श्रोता मित्र चल अब कमेंट दिस लिखने चाहे अविनाश कुमार भारती जी हाय हेलो नमस्ते दीदी हमरा एगो जी कुमार सानू के आवाज में गाना सुना दिया रातों में जगाए नींदों को उड़ाए करके लिखने चाहे शंभू सुथियार जी लिखने चाहे हेलो दीदी सॉरी शंभू जी लिखने चाहे हेलो दीदी नमस्ते हम बिहार के समस्तीपुर से लाइव प्रोग्राम सुन रहल छी प्रोग्राम बहुत अच्छा है एक सॉन्ग है के लिखने छात फिल्म का नाम कृष्णा लिखने छात मैं इस कदर मेरे महबूब जी सुना दिया कह के लिखने छात बड़ सुंदर है श्रोता मित्र अहाँ सबके कमेंट एहने सुंदर सुंदर कमेंट क साथ दैत रहू एक घंटा धरे रही छी अहाँ सबके संग में आ श्रोता मित्र आई संडे छी तो अहाँ सबके कमेंट के माध्यम से फरमाइश कैल गीत हम सब पूरा एक घंटा धरे प्ले करब तो अहाँ सब भोरकवा एफ एम के यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब क कमेंट पठा सकै छी साथ ही संगी सबके याद क सकै छी।

मैं इस कदर मेरे महबूब दूत से प्यार करूं। श्रोता मित्र बड़ सुंदर गीत चल चलब कमेंट दीस लिखने चाहे ध्रुव यादव जी। हेलो दीदी, गुड इवनिंग। गीत सुना दू अचको मचको फिल्म इतिहास फिल्म सा। तेना राम सेवक पाल जी लिखने चाहे हाय हेलो नमस्ते नमस्कार गुड इवनिंग। सीमा जी दीदी बहुत सुंदर गीत बजे लिए दीदी। हम राम सेवक पाल समुना ट्रैफिक सा लिखने चाहे हमरा एक गीत सुना दिया। गीत के बोल लिखने छायत फिल्म क्रांति सा तुम तारम तुम कह के लिखने छायत चना जोर गरम गीत के फरमाइश करने छायत। तना लिखने छायत राजेश कुमार जी हाय हेलो सीमा दीदी गुड इवनिंग प्रणाम हम राजेश एकटा गीत सुना दिया। दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। टेक्निकल सर के प्रणाम जी अमितो जी प्रणाम कह रहा छायत नमस्ते नमस्कार कह रहा छायत राजेश जी थैंक यू गुड इवनिंग कहकर लिखने छायत। तना लिखने छायत जी लक्ष्मण साहू जी लिखने छायत नमस्ते दीदी रिया इलेक्ट्रॉनिक मुरली चौक फुलपरास मधुबनी बिहार से प्यार किया तो डरना क्या कहकर लिखने छायत। बड़ सुंदर है श्रोता मित्र अहाँ सबके कमेंट एहने सुंदर सुंदर कमेंट कहकर सब दिन साथ देते रह आई एक घंटा धरि साथ दिलौं तक लेल बहुत रास धन्यवाद अच्छे आगू दिन महीना कमेंट कहकर साथ देते रह कार्यक्रम के अंत अंत में छी। अपने सबसे विदा मंगवाक समय भ चुकल अछि। श्रोता मित्र एक घंटा धरि में जतेक गीत हम सब बजबा सकलहुँ जिनकर जिनकर फरमाइश सक बजा सकलहुँ जिनकर सबके नहि बजा सकलहुँ हुनका सबके कहला चाहब जे अहाँ सब आगू दिन में कमेंट कऽ कऽ साथ देब स्योर सुनेबे करब। एते बात कहैत आइ जे टेक्निकल रूप से एक घंटा धरि साथ देलथि अमित जी हुनको धन्यवाद दैत आइ के कार्यक्रम से हम सीमा विदा होइ छी। नमस्कार शुभ संध्या सुनैत रहब भोरकवा FM 92.8 MHz।

0: Mania Extreme Energy Drink.
1: यही सुनू
2: की कहे छे?
1: हम जाए छी तिरुपति ट्रेडर्स में, वही ठाम सीजन अनुसार के सब व्यू विजन भेटे छे, खरीद लेबे आ चल अबे।
2: एकटा रोटावेटर के ऑर्डर सेहो दे देबे।
1: हेते
3: तिरुपति ट्रेडर्स राजविराज।
4: जी हाँ, एहिठाम विभिन्न प्रकारक औद्योगिक मशीन उचित दाम में उपलब्ध है।
3: चप्पल बनाबे वाला मशीन,
4: मुर्गा दाना बनाबे वाला मशीन आ माछ उत्पादन के लेल कृषि औजार सामान सब,
2: पावर ट्रेलर,
4: थ्रेसर,
2: रोटावेटर,
4: कम्पाइन, धान आ गहूम काटे वाला मशीन,
2: रोपे वाला मशीन,
4: स्प्रे, मिल सेट, जेनरेटर,
2: कृषि औजार, स्पेयर पार्ट्स
4: आ बोरिंग सामान संगे घर निर्माण आ हार्डवेयर संबंधी संपूर्ण सामान उपलब्ध।
3: तिरुपति ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स, कंचनपुर रोड, राजविराज 8।
4: प्रोप्राइटर अशोक कुमार यादव।
3: मोबाइल
4: 9807788897 आ 9847452178।
5: अपांगता भेल व्यक्ति, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक आ बिरामी के विशेष ध्यान देबाक चाही।
6: आइ काल्हि अत्यधिक गर्मी आ गरम हवा चलो वाला समय अछि, ताहि एहन अवस्था में जर एनाय, उल्टी जकाँ लगनाय, थकान लगनाय, बेसी प्यास लगनाय, धड़कन बढ़नाय, श्वास प्रश्वास में समस्या भेनाय, अत्यधिक माथ दुखेनाय, बेहोश भेनाय, मांसपेशी सब दुखेनाय, उल्टी भेनाय जेहन समस्या सब देखल जा सकत अछि।
5: गरम हवा के प्रभाव तथा लू लाग से बचे वाला उपाय सब,
6: जूस, शरबत आदि प्रशस्त मात्रा में पियल जाओ,
5: दिन भर प्रशस्त पानी आ झोर वाला चीज सब सेवन कैल जाए,
6: हल्का ढीला आ सूती के कपड़ा सब लगावल जाए,
5: संभवतः ठंडा स्थान में बैसल जाए,
6: दोपहर के समय में अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाओ,
5: बाहर जाइए पर छाता, टोपी, चश्मा आ पंजा प्रयोग कैल जाए,
6: खाली पेट बाहर नहीं जाओ,
5: दोपहर के समय में कड़ा शारीरिक परिश्रम नहीं कैल जाए,
6: स्वास्थ्य संबंधी कोनो प्रकार के समस्या देखल जायत अछि तऽ स्वास्थ्य कर्मी संग नियमित संपर्क में रह अनुरोध कैल जायत अछि। सबल नेपाल आ समावेशी अपांग संग सप्तरीक साझेदारी तथा CBM ग्लोबल के सहयोग में संचालित अपांगता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना द्वारा जनहित में जारी संदेश।
7: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz।

0: यो बाढीको मौसममा सजग हुनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। बाढी जुनसुकै बेला आउन सक्छ, प्रतिकारका लागि तयार रहनुहोस्। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग डिएचएमले नेपालका अधिकांश भागमा औसतभन्दा बढी वर्षा हुने पूर्वानुमान गरेको छ, जसका कारण बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्न सक्छ। सजग रही आवश्यक जानकारी लिनुहोस् र स्थानीय सूचनाहरूको पालना गर्नुहोस्। तपाईँको सुरक्षा यिनै कुरामा भर पर्छ।
1: बाढीको जोखिम भएमा यी उपायहरू अप्नाउनुहोस्।
0: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग डिएचएम, वडा कार्यालय, स्थानीय सरकार तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट प्राप्त बाढी सम्बन्धी जानकारी र चेतावनीहरूलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् र त्यस अनुसार उपयुक्त कदम चाल्नुहोस्।
1: नजिकका नदी र खोला नालामा पानीको सतह नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुहोस्।
0: यदि तपाईँ नदी किनार वा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ भने सुरक्षित आश्रय स्थल वा उच्च स्थानहरू पहिचान गर्नुहोस् र त्यहाँ सुरक्षित तरिकाले निस्किन सकिने बाटोहरू खोज्नुहोस्।
1: चेतावनी जारी भएमा ढिलो नगरी तुरन्तै सुरक्षित स्थानमा जान तयार रहनुहोस्।
0: अत्यावश्यक सामग्रीहरू जस्तै टर्च लाइट, मोबाइल फोन, चार्जर, औषधि, सुक्खा खानेकुरा, सफा पिउने पानी, नगद र परिचय खुल्ने कागजातहरू जस्तै नागरिकता, राहदानी वा अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रहरू एउटा झटपट झोलामा तयारी अवस्थामा राख्नुहोस्।
1: झटपट झोलालाई घरभित्र सजिलै देखिने र तुरुन्तै लैजान सकिने स्थानमा राख्नुहोस्।
0: आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नुहोस्। सम्भव भएमा बहुमूल्य वस्तु र चौपायाहरूलाई उच्च स्थानमा सार्नुहोस्। अरूलाई पनि मद्दत गर्नुहोस्। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्नुहोस्। गर्भवती, सुत्केरी र स्तनपान गराइरहेका आमाहरूका लागि सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्नुहोस्। उनीहरूका लागि सकेसम्म छुट्टै र सुरक्षित शौचालयको प्रबन्ध मिलाउनुहोस्।
1: विपदपछि हुन सक्ने सर्पदंश तथा पानीजन्य संक्रामक रोगले निम्त्याउन सक्ने स्वास्थ्य जोखिमप्रति सचेत रहनुहोस्।
0: यो सूचना तपाईँका साथी, परिवार र छिमेकीहरूसँग पनि बाँड्नुहोस्।
1: बाढी ढोकामा आइपुग्नु अघि नै तयार रहौ, आजैदेखि सतर्क रहौ।
0: यो सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोड अन्तर्गतको हाई ग्रिड परियोजनाबाट अस्ट्रेलियन सरकार र सबल नेपालको सहयोगमा प्रसारण गरिएको हो।
1: चेतावनीहरू सुन्नुहोस्, द्रुत कदम चाल्नुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्।
2: राज विराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल
3: एहन कोनो समस्या ऐसि त निक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
2: याद राखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
3: फोन नंबर 9800 11978।
4: हे कनिया, अहाँ के गहना बड़ा सुंदर या डिजाइनो नया कत बने लिए?
5: ये काव्या ज्वेलर्स राज विराज में बने लिए। आधुनिक डिजाइन का सोना चांदी का गर गहना, ऑर्डर बमोजिम का गहना गारंटी के साथ बनबे आ नवग्रह का पत्थर सेहो भेटे छे।
6: काव्या ज्वेलर्स राज विराज 7 मेन रोड अदालत के पूर्व, प्रोपराइटर सोनी कुमारी साह आ सुनील साह। मोबाइल 9817140445।
7: ये दीदी देह भारी छे आ डाँड पीठ से दुखाइए, कौन उपाय करबे?
8: बहुत पुरान आ अनुभवी छे डॉक्टर दिलीप कुमार साह अपने घर में सेवा दे रहल छे, चलू न ओते जांच करा दे छी।
9: अब अपने भवन राजविराज में गजेंद्र नारायण सिंह सर माथा अंचल अस्पताल में कार्यरत प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार साह टीचिंग अस्पताल काठमांडू MD
8: प्रसूति आ स्त्री रोग संबंधी संपूर्ण जांच आ इलाज करैत अछि।
9: सेवा आ सुविधा सब
8: बच्चा दानी खसनाई के ऑपरेशन सेवा, गर्भवती महिला जाँच, स्त्री रोग, लिकोरिया, महीनावारी गड़बड़ी, पीठ आ डाँड दुखेनाई, पेशाब जलन, मांस बढ़नाई, निसंतान दंपति के परीक्षण, IUI सेवा, वीडियो एक्सरे,
9: आधुनिक लैब के संगे फार्मेसी सेवा उपलब्ध।
8: अवश्य सेवा के मौका देल जाए।
9: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार साह राजविराज हनुमान नगर रोड साबिक जन स्वास्थ्य ऑफिस से पूरब। छिन्नमस्ता अस्पताल के सामने दक्षिण साइड।
7: मोबाइल
9: 9816-77985 आ 9817-89133।
10: कतेक दर्द करे छे ठेहुन भीने आ नस फूल जाय छे।
11: की भा गेला से?
10: ओ बुआ, नस फूल गेले आ ठेहुन के जोड़ से दर्द करे छे।
6: आप चिंता नहीं कर, चलो मंडल जी के क्लिनिक राजविराज में
11: डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल से जांच करा दे छियो।
12: एरो आ हमारे डाण का नस बड़ दुखाया बारे, ठीक भ जाते ना?
11: पूरे ठीक बाजते।
9: जी हाँ, हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल MBBS MS।
13: हर प्रकारक टूटल हड्डी जोड़नाए, प्लास्टर, ऑपरेशन आ नस रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि। संपर्क कैल जाए।
9: हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल, नर्मदा अर्थो केयर सेंटर, राजविराज, नेता चौक दक्षिण, हीरा फार्मेसी।
13: मोबाइल 9847-96749 आ 9817-30096।
14: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ से बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राजविराज में चल रहा है। फिल्म हनुमान अंश,
3: हिंदी फिल्म हनुमान अंश, सब परिवार आए देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी से प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।

0: कथी कहै छी
1: गे बाबू सब केना ऐठले बाजै छै
0: अरे ऐठले तो ठीके त कहलु कथी कहै छी
1: कहलु झोला तोला लिए जाऊ ना सामान आन दिए ना काल तीज छै से अभी सड़ गेलियै
0: हम अखनी झोला तोला उठबे वाला नै छियै गाड़ी का दुईटा साइकिल का सीख पटक पर दलिया ला जाय छियै पोखर
1: आगो बाबू से ये कथी लाये
0: पोखर में नहावे साइकिल का दोनों टाका आ तब ई भट भटिया के ओकरो नहावे पोखर में हेला हेला के
1: सामान क्या आन देते तो
0: कथी के सामान
1: बिसर गेलिया तीज नहीं छे कल की ना नहीं ओरियबे त न कल तीज करबे
0: वेह कहे छ अपने तीज नहीं छे
1: चीज़ ये से कहलो
0: हाँ तो तीज करवे यहाँ सामान आन के देव हम
1: आ जाओ तो बाजार में देखबे सब के ऊ जे छे से सामान और किन के आन दे छे तीज करैलो आई जाय छे साइकिल धोए लाइए गाड़ी धोते आइए
0: हाँ तो कल फुर्सत नहीं हेते न तो खिसिया जेते विश्वकर्मा बाबा जाय छे पोखर में हेला हेला के कम बढ़िया से नूरी ला के रगड़ रगड़ के तब नहावे ए सब दिन साल भर जोते छे हम नहते के वो सब दिन जया जया जरूरी पड़े परदेश जाय खातिर तो वही गाड़ी पास साइकिल पर जाय छलिए बैठ के
1: हाँ से तो जात रही
0: तो कल पूजा छे तो हम पूजा करबे न
1: ये कल वहू के पूजा छे हमरो तीज छे ये
0: अरे तेरी बाला के तो ओते टका हम कत से जानबे
1: आ तब चौरचनो छे कल ही
0: चौरचनो कले छे
1: हाँ बुढ़िया कहे छले
0: अरे तेरी के तना करू नहीं ये
1: की
0: तब तो अहा के सह परत
1: हाँ
0: तीज कथी ले करबे हां छोड़ दियो ना
1: ये केना के कहे छे जे तीज छोड़ देला ही खातिर तीज करे छी
0: हमरा खातिर
1: हां से नै बुझन रहिए से त ककरा खातिर करे छे लोग खातिर
0: ए हमरा की बोलते त हमरा खातिर तीज करे छी अहा
1: कहे छे तीज करे छे ना त समांग दे छे अथी कथी कहे छे निरोग रहे छे ककरो किछो नै होय छे बहुते दिन जियै छे
0: त हम निरोग नै छी या
1: पावन करे छे त ना निरोग छी आ नै करबे त थोड़ी आ निरोग रहबै
0: अरे तेरी वाला के तब तो अस्पताले बंद भए जेतै या
1: कथी ला
0: सब करे देबे न ओकरा खातिर अपन ओकरा खातिर
1: हाँ से तो बहुते आइ काल्हि नै देखै छी आय कते कार्यक्रम में गेलिए कते कार्यक्रम में गेलिए चाहे थक गेलिए नाचैत नाचैत
0: अरे बाप रे बाप
1: हमर वीडियो नै देखलिए हाँ
0: हाँ एक ठिना आधा के मुंह देख लिए रहा अब वीडियो में एक ता और चीज देख लिए रहा ये
1: कथी
0: वो में बहुत अही सनक लोग सब रहे लाले लाल कपड़ा पहिरन रहे हाथ में बियरों का बोतल रहे ये
1: है तेरी का डांस करे थे हते ना
0: हाँ
1: तब लेना है ते बियर का बोतल बियर वाला डांस नहीं एक टाइम आवे छाए
0: आजकल तीज मनावे छाए का है ए बारू छोड़ दियो कहियो सब का छोड़ दे अपन संस्कार आ संस्कृति विसर के देखा सीखी करे छे हम सब
1: ए नै बाजू न तते नाच कर लिए न तते नाच कर लिए जे टांग गुड़े जो का दुखाय छे
0: तब त कोई एते न हमरा ल सटा करे ल त अही के भिरा देब हम
1: कने तीज रह चोकरा के नाम से तीज कर लिए त नाच लिए की हमरा का सब महिला ग्रुप सब का अथी नै भेलै तीज अथी का कथी कहै छै ये
0: कंपटीशन
1: हां पार्टी ये
0: ए पार्टी के लिए रह
1: हां ये बहुत सब मना लिए ये
0: भेले नहीं है पहले मना ले लिया
1: दस दिन पहले से मनावे छे कहियो ओत कहियो ओत कहियो ओत फेसबुक में नहीं देख लिए ये सब साथी और सेल्फी और देना छे फेसबुक में आंग मोबाइल में की देखत रह छे खाली टिकटॉक के देखत रह छिए
0: वेह टिकटॉक में देख लिए बोतल लगला के नाचत रह ओ अथी सब की कहवा छोड़ दियो
1: ओ वाला हमरा के नहीं छले ये हमरा के पानी का बोतल ला के नाचे छलिए
0: ए अच्छा की सब आना पड़ते ये
1: बाप रे बाल लियन कनी कॉपी लियन लिखू बड़ी टा छे लंबा लिस्ट
0: अरे तेरी वाला के हलिए कहू तो
1: शुरू में
0: हाँ
1: साजा साड़ी ब्लाउज चूड़ी सिंदूर तकर बाद पोते नया रिबन टिकली अथी कथी कहे छे लिपस्टिक नेल पॉलिश रबर नबका, तकर बाद ई भए गेल हमर।
0: हाँ,
1: तकर बाद लिख लिए सब कुछ।
0: हाँ, लिखना जाय छे।
1: तकर बाद फल फूल में चलू, आब तो फल लिखू फूल लिखू।
0: अब फल लिखू फूल लिखू।
1: ना ना लिखू ना, अहाँ के दिल कहे छे
0: अहे कहलिए ना।
1: हाँ, लिखल कहे छी फल फूल लिखू से कर।
0: हाँ चलिए ठीक छे।
1: तब शुरू शुरू में भेल नारियर, केरा, सेब, नाशपाती, तकर बाद कथी भेटे छे आइ काल्हि
0: जे भेटते हटिया में सब चीज ले लेब।
1: हाँ, सिंगार के सामान सब लिए पड़े छे ओत, भोला बाबा के प्रसादी और लिया के तब भोला बाबा के चढ़ेबे तब ना भोला बाबा खुशी है छे।
0: भोला बाबा खातिर तब एक मतलब पूजा करी छे।
1: हाँ, ये भोला बाबा के पूजा करे छे ना।
0: हाँ,
1: तब कहे छे जे हाँ वो का धिया पुता का घर का सब का सामान अथी कथी कहे छे रक्षा करे छे भोला बाबा, ये सब मांग दे छे। ये
0: एक टा गप कहू त
1: के
0: ई जहिया से ये लिए तहिये से करे लगलिए कि वैसे पहलो करत रहिए।
1: वैसे पहले कथी ले करबा, लेकिन अब करे छे बियाह नहीं भेल रहे छे ना, कुमारो लड़की आरु करे छे तो भोले बाबा जो का दुल्हा भेटे छे ये।
0: अरे तेरी वाला का तो हमर माँ कहाँ कहियो कर ल कहिए
1: नहीं कल का
0: दीद कहियो न कर लगे, सुनना न रहे बुझना न रहे,
1: तब हम बे के छूट गेल बूढ़ भेले तब की करते।
0: अरे तो कहियो न देख लिए हम
1: नहीं देख लिए थी की भेले माँ का कोनो बड़का मोबाइल यो हमरो का तो बड़का मोबाइल छे, कार्यक्रम रखे छे तीज वाला, फोटो खिंचावे छे फेसबुक में दे छे, कमेंट है छे लाइक है छे शेयर लोग करे छे।
0: ए एकर मतलब वो देखावटिए खातिर अहार का फोटोए खींचे खातिर तीज करी छे ना।
1: एके रंग साड़ी पहरे छे, एके रंग चूड़ी पहरे छे, तब ना फोटो एके रंग रहे छे सबको।
0: बुझ गेलिए देखा सिखी करे छे अहार और गया।
1: हे चुप, देखा सिखी करे छे। हैये सुनू ना,
0: तो पैसा दियो ना। तो
1: हम दे पैसा
0: तो हमरा ल कोन पैसा दे जाय छे, हमू अथी लेबे बाबा विश्वकर्मा खातिर।
1: बाबू ल जान कहबे परदेश वाली कहे छलो ले लावा, आ तब चौरचनो का सब चीज किन के आनो पर सब कुछ खातिर बड़का बोरा ले लिए बुझलिए, एक बेर सब सामान किन लाव आ कपार पे धा लावा, गीत गाबते चल आव।
0: तो चौरचनो आए करबे या
1: माँ करते ना।
0: हाँ, वो तो ओकरे देखे छे हाथ उठवत रही छे साँझ का।
1: चौरचन तीज हम करे छे, माँ चौरचन करते, अहाँ विश्वकर्मा बाबा के पूजा करबे तो बाबू छूट गेले।
0: बाबू का हमरे हाथ टांग पकड़ लेते बाबू वही में भाग दे।
1: हाँ का टांग किया पकड़त से,
0: मतलब कहे के मतलब से आ भेले
1: गोर लाग लेते।
0: हाँ
1: हाँ, तो ले जाओ सामान लिस्ट ले लियो आ तब आब ना, तब गाड़ी के ले जा पोखरि में पानी पियाबे ल।
0: पान पिया वाला नहीं, धोए ला ना आवे ला।
1: धोए ला
0: तो चलो ना, पैसा दिया दिया बुढ़िया से।
1: बुढ़िया देखियो ना कोना गेले, हे हमरा नहीं बजाबू नहीं, कल सब है ना आइए से मन थक गेल छे।
0: से वे हम काम कथिल करते लोग, हम ही सह लेते तो नहीं दिया।
1: हाँ कथिल सब है, कतो सुन लिए जे जेंस लोग लोग जे छे से तीज करे छे।
0: हाँ हमरा खातिर कर जैसे भेला, हाँ खातिर हम करबे तो नहीं भेला।
1: नहीं सकलिए एकरा हे भगवान, जे मन ये से करू, बजत बजत हमरा कंठ दुखिया लगल ये।
0: चलू ना खाली यहाँ बात का खोट देवे, यहाँ चुपे चाप रह बुढ़िया ले। चलू ना
1: बुढ़िया, ये कहता बुढ़ भी ले आ चौकी पर बैठल।
0: चलू ना तब हम कहे छे तो खिसिया लगे जे नहीं बुझे छे।
1: हवे देख लिया, हवे बुढ़िया ये देख लिया ओत।
0: हाँ
1: आ हे वो कहता हे बुढ़वा ये देखे छे हमरे नाम चर्चा कहते हेते।
0: चलू ना तो एक बार गप खाली उखाड़ देवे तब हम पूछ लेबे ले लेबे टका।
1: अच्छा चलू
0: चलू।
1: सुने छतिन ना, ए हिनके कहे छियन
2: गदी गए जा
1: गो बाबू गो पावन छिया, आइयो ने सामान आनथिन केन का कान पटेना छतिन ई या बाबू।
2: अरे कहिया पावन छे, क्या दिन रहले आबेलो।
1: हे भगवान, कल हे छिए विश्वकर्मा पूजा छिए, तीज छिए, चौरचन छिए, हिनका कान में आवाज नहीं गेलन यो।
2: हे गोबा कल है पावन छिया चौरचन
1: छे ना, तो हम गहूम सुखेलिए चौर सुखेलिए से सब एकरा कहबे पिसबै ला, से सब पसुरता नहीं छे। आ जाइत रह साइकिल ले के धोए ला पोखरि में।
2: हम कहे चलिए चौर तौर भरि सक धोए के सुखेल कहिया, भरि सर लहरा दै राजे दै कि केना गौ बाबू जे हम तऽ केहन हमर जुरता छै पाबनि तिहार केना गे हम बिसरि गेलियै देख सब साल चौरचन पाबनि करै छियै हाथ उठबै
1: छियै
2: हमरा सग हेतै मोटा उठाएल आय कहुना के जतेमे बीज लेबै तऽ हेतै न आ की कहै छै आ माटि के बर्तन कोरोना तोरना ई सब लाबो पड़तै न दही दही पोरै ल आरो दोरी के दगी गो काल्हि छी आब तऽ एकोटा दिनो नहि छै बीच मे आ तऽ आइये जेना तेना के आनो पड़तै साझो तक मे
1: पैसा देथिन पठबै छियै सब कुछ ओरिया जेतै
2: आरो तोरी के देख केन हड़बड़ा के पाबनि चलै हम थाहे न पाबलियै आई बुढ़वा बुढ़वा कहाँ बाजल देख सब बेर बाजे चलै अबरी तो हमरा कोई न मन पार दिलकी
1: बुढ़वा तो कान पटेना रहे छे जे पर पाबनि एतै तो पैसा मांगते भने ई सब बिसरल छे
2: खर्चा नहीं हेतै आ पाबनि तो करे छे सब साल तो करे पड़तै न दगी गो बाबू सब एकटा बेटा ये हमरा आई पता पति भेल ये आई पाबनि नहीं करबै देख आई कोने छै बुढ़वा ए बुढ़वा
1: वही ठिना बैठ के जोड़ी बाटे छे नहीं देखे छथिन
2: लकी कहाँ बाजे छे
0: भेले ये
1: रुको ना बाबू के कहती मैया के कहलिए बाबू के कहे छे भेले ये अहाँ के मुँह में बोली नहीं है नहीं बाजे छे से
2: ए बुढ़वा
0: हाँ
2: बाप रे बाप कत ध्यान में लागल जे नहीं सुने जो
0: तेरी गई डोरी बाटे त रहिए
2: त डोरी दै हाथ से बाटे जन कान में कदी बल नै सुनै छ
0: कान में कथि रहते अथि भजन कीर्तन सुनै छे बाव दल के रह कल के हे ई लगा ले आ कान में लगे न रहबा न त भजनो कीर्तन सुनिह आ कामो करत रहिए
2: आगो बाबू स कान में यो हो या कान में ठेकी लगब लागले देख हम नै बुझना चलिए बुढ़वा
0: अब की करबै तो अब धिया पुता इनके दे दै छै तो हम की करिए छोड़ दिया
2: ले ले ठीक है जे सुना कब का कह लिया की बाप रे बाप बाबन तक कह लिए जे जर्जन पाबन
0: अरे तेरी भला तो
2: अरे है ता दिन दिन ता बाबन जे कल गिना
0: कल है
2: कल है या कई दिन में दिन ता बाबन
0: तो तीन ता पाबन छे तो कोनो एकेटा न करता है
2: ए आ विश्वकर्मा पूजा नहीं करे जा सब साल चौरचन पाबनि नहीं करे जा
1: हम तीज नहीं करे छे बाबू
2: परदेश वाली तीजो करे छे तीन टा पाबनि भला न
0: तब तीन टा तो तीन गोड़ा के भए गेलो फाट में पड़ गेलो
2: देखो तो कदी फाट में पाबनो फाट फाट है जाए
0: तू चौरचन के लियो परदेश वाली तीज के लेता है बउआ विश्वकर्मा पूजा के लेते
2: टक्का निकाल न मुहे से भ जाए छे
0: टका तो टका हाँ टका बिना टका का कथी है जी
2: सामान जब नहीं लाव पड़ते हटिया बाजार से गो बाबू कखनी आनते कखनी की करते सबटा धोई धाई कर रख पड़ते सब चीज ओरियान बरियान कर पड़ते आइए से तब न कल हेतै
0: कते टका लगता
2: आ परदेश वाली क्या निकलिए क्या टा अथी लिखना छे सामान सब लिखला सबटा सामान सब हम तो बिसरियो जात रहे छे कोन कोन छूट जते
1: हे देखा दियो ना कागज ये केन चोर जका नुकेल छे मुंह डूब के ना छे
0: हे तेरी के
1: दियो ना तो कागज बाबू के कहियो ना
0: छोड़िए तो अगनी ओना करबो जबै तो
1: 5000 टका हमरा साथी मांगो आ तब ना चौरचन रह तब ना से अथी रह त अहाँ के विश्वकर्मा पूजा सब साथी 10000 टका मांग लियो ना चटसिना
0: आय 10000
2: बाबू रे ओदे टका खर्चा 10000 टका भ जते खर्चा
0: ये सुनी न कह छो
2: की बात है जई सब
0: अब हम कह दे छो खोल के सब गप
2: गधी अरे आन साल कहा 10000 टका खर्चा है जले रे तोरा के की जो एक देख लिया
0: आन साल एक के दिन नहीं न पड़त रहे थे पावन आ एवरी एक तीन टा पड़ गेले एक कई दिन
2: अरे चार त अरवा जोर अपने घर में जवा धुआ के सुखेबो कर लगो पिसबे ले चल जिया पिसै मात्रे लाग दो गहूम को ओइना पिसै मात्रे लाग दो आटा छबे कलो सब्जी छबे कलो आ देलिया ना भर दो दल दल आना पर तो आ की कह जे क्या रह तेरा
1: दूध केला सेब संतोला नहीं आना पड़ता
2: कनी मनी लड्डू मिठाई केरा दरा ले लिया भ जते वे हम
0: तू वह तो कह लियो आ ई जे करे छो तीज एक ता बात बुझली हो
2: कथी
0: कहे छे हमरा के ओय दिना दू तीन दिना चार दिना पहले से लड़हल से लहल कर लकी
2: की भेलै छे भरिया के बाजबी कहबी तब न बुझबाय।
0: कतौ कतौ ई सब अथी करलको लेहल से हेल करलको
2: कतौ लड़हल सड़हल कतौ चल गेले लड़ सड़ गेले खेत चल गेल रहै।
0: दस गोरा ये सब का चिन्हार सब महिला सब जर भए गेलै आ खब के नाच लै गई।
2: आगो बाबू सब आरो अब ई सब डरमा कंपनी खोले नाचो लागले आब
0: अपना और का समाज में देखली कहियो कतो नाचे।
2: आगो बाबू सब लोग की कहता है परदेश वाली है कद फलना के बुद्धो नाच करे जे नडुआ भए गेले। गो बाबू सब गो बाबू सब
1: कहता चुप झगड़ा केना लगवाई छे देखतीन एक घर से निकलतीन त ना कुछो देखतीन हमार ये झोलपट्टी वाली रहे तब सबटा मैडम सब रहे सब गोरा तीज समारोह मनेलिए दौड़ खेलिए त नचनाय भए गेलै ओ त मनोरंजन नै करबै।
2: ए फर गेला ओ त जाके अपनो बाड़ी में त फर जे कोड़ी लाब न ईठम रैन के खा लिए सब गोरा देगी गो त जाके फर खैले जतै
1: दौड़ खेलिए दौड़। हे भगवान गो बाबू गो बाबू
2: दौड़ की कहे छे धार कहे छे की कधी कहे छे कधी का धार मुड़ी खाय जा
1: मतलब नहीं बुझलखिन पावन करे से पहले आ 10 दिन से चले छे कार्यक्रम सब कहियो ओए ऑफिस में कहियो ओए ऑफिस में कहियो ओए ऑफिस में होटल और बुक करे छे बुझलखिन आ ओत जे छे से खाना पीना का व्यवस्था रहे छे मतलब जते खाय वाला चीज रहे छे सब खाय छे ठंडा रुपिए छे आ सब जते तीज करे छे ना सब गोरा नाचे छे गावे छे मनोरंजन करे छे ओकरे कहे छे दौड़ खेनाय।
2: आगो बाबू सब गो बाबू सब आज पाबन हम के लिए आज तक हम ये नाचे वाला पाबन नहीं देखने रहिए गो बाबू सब नज नज का खाय जाए। आगो बाबू
0: साहबू जी नहीं सब खर्चा का घर छियो
2: ए हमरे के जमाना में कहां ये एहन पाबन करे झले गोए। आगो बाबू सब हमरा गई नडुआ अथी वाला पाबन नहीं है जे नाचे वाला धर भर खाय वाला पाबन अखन तक बूढ़ भए गेलिए अखन तक कहियो न देखना चलिए न सुनना चलिए रो आ दोरो ला गेल चलो भर खाय ल नाचे ल
0: हे तेरी के धर नहीं के दौर
2: कथी का डर भए गेले।
0: हे भगवान कहलिए ई सब खर्चा के घर छिये दोसर के देखा सीखी जहना जहना लोग करे तहना तहना इहो करे लगलो आब एना करे छिये
2: केना
0: ओ अथी में रक्षा बंधन में झड़ल रहे न साड़ी
2: सेट
0: घरे में काम लाग जते चूरी आल रहे घरे में काम लाग जते आ तकर बाद में सिंगार पेटार के घरे में छे आ खाली जाय छे एकटा सेव किन लेबै एकटा के एकटा सेव एकटा समतोला एकटा केला एकटा नाशपाती ई सब किन के आनि दै छियै आ चौरचन खातिर सेब क्या गोड़ा छियै हमरो के तैटा गैन के तैटा केला लै लेबै नारियल लै लेबै आ जिलेबी लै लेबै तैटा भए जेतै तऽ खर्चा तऽ नहि लागतै।
2: अरे जिलेबी तऽ घरे में चोबिया बैठल छू।
0: हे देखा ए दिमाग दिमाग सठिया गेल तोहर हमरे खेते ई सब
2: उ कहे जे जिलेबी लेबै दा गधी कहबै दा
0: ए तेरी का हे गे दुकान में बिकै छै से जिलेबी कहलियो
2: ओ मिठाई
0: कमे कम करके ले लेबै
2: हां
0: तो ओते टको ने खर्चा हेती आ विश्वकर्मा भगवान ला ओकरो ला एकटा के लड्डू ले लेबै चल जेबै।
2: अरे तोरी का ले ले ठीके छे कनिये कनिये कनिये में काम जलबो पड़ते कहुना के भए गेले की कर दे पावन देखता अथी जे बहना जे पावन में लाटा लोग खाली खाए बला अधी व्यवस्था में रहे जे कोनो भाजा खाओ रंग बिरंग का पूरी पकवान बनावे हे ऊ बनावे ई बनावा खाली सब गोरे मिल के खाओ
0: हमरा कहे अही खातिर पावन करे छी।
2: हेलो हम तो कहे जो काई तीज फीज कहाँ कहियो सुन न चलिए हमरो बाप रे बाप की चले जे कौन कौन नया नजा चले जे गो बा गो धर खा वाला पावन नाचे वाला पावन गो बाबू सब के नडुआ बना दे दे
0: पावन समाज के पावन नहीं छे
2: शायद कहे जे सब के नडुआ बना दे दे पावन जे करते से गो बा
0: जैला अग्नि मोबाइल में ना टिकटॉक वाला सब के नडुआ बना दल के
2: हां
0: तहिना ई फैशन छे
2: कहते लोग की कहते कहते परदेश वाली नाचे जे फलना के पुतो गो बाबू गो गो डांसर भए गेले।
1: आई लुतरी ला रही छिया मुंह खोखर लाब से बात बुझ लिया अखनी केन का मैं बाबू छे आ केन का हमर अथी करे छे किढास करे छे
0: सुनी सुनी सुनी आ कन्या काल के अही खातिर पावन करे छे उ पावन हेते कहला मुंह खोखरे छे ये से हमर मुंह खोखरे खातिर पावन करे छ
2: आगो बाबू जे अब पावन करे जात कनी नीक कनी बोली नीक राख पावनो डा दिन कनी नीक बोली राख ओकरे खातिर पावन करे जा आ ओकरे मुंह घघरे जा तो पावन केना फल हेतै से क
0: तेरी के छोड़ न दो
1: तेरी कथि ल लारै छै से कह त आ
2: छोड़ ले
1: दुनिया में पावन करे छै त न हम करै छियै के बीटा करै छियै छोड़ देती न नै करबे
0: हे ला ला ला ला हे पावन कर लेकिन डांसर वाला पावन नै कर 5,000 दे छो एमे सब चीज मिला के ला लीह
1: सब दिन हर और खटखट करैत रहे छी 5,000 टका में की हेते हमर सजा वाला साड़ी केना के लेबे हम चमकै वाला
0: ए तो बाव कहल के ना रक्षा बंधन में झड़ल छै
1: उ सूती साड़ी छै ओ साड़ी में फोटो केहन येतै
0: आगो बाबू सब ई सब पावन करते की फोटो घिचेती
1: नै हम उ चमकै वाला साड़ी लेबे उ सूती साड़ी पहिन के कथी छिया जा चाती करेले छठ पावन करेले जाय छै से
0: देखो नहिरो से दिल कहे तो वो फटे कंपनी वाला सूती साड़ी दिल के छछलौ ये कह देती हत देते कि ना जे हम ई नै लेबे छछलौवा दे
1: ओ साड़ी में बहुते दाम लगे छे ते केना के किनता है कहे छे जे
0: ला ला ला भाग ले ला ए टका ला आ घर जे एनो का सामान ये नै हम व्यवस्था क्या दे छी आ अरे ई टका ले आ जो मिले के सब काम कर लिए कमे कम कर के सब चीज ला लिह हे ते लावे ना फिर हमरो जा पड़ते मोटरसाइकिल का साइकिल के नहावे ले पोखर ले ले ले ले जो जो जो
1: बर्तन केना करवाइए
0: बर्तन ये ते ने बेचे ल वही त रास्ता के त डगर के त बैठल रहू
1: आब लास्ट बे आ जते ये ते बेचे ल चलू ना बाजारे में किन लेबे
0: आहो जब बाजार से
1: आब त हेत ते चीज किनल
0: ये ते चीज नै दे आहा अपन डिपार्ट के सामान अपने किनब
1: हमरा गाड़ी पर लोड कर के नना चलू बुझलिए हम बर्तन किन लेबे आ हम अपन चीज के सब कुछ अपना पसंद से किन लेबे हम चल लेबे
0: तो से आहा अपन जे मन ये करू त हम जाय छी मिल जाय छी हम सब चीज कुटा पिसा कैन दे छी
1: अच्छा हेते
0: मैया ए मैया ले जा जाओ बैठ माइट का बर्तन चौरचन का सामान सब बासन छाछी छे कोरना छे ढकना छे दिया छे चौमुखी छे मैया ले जा जाओ बर्तन
2: अरे दोरी गगे ना हल्ला दे जाए ए गे छे गधी बेचे बला ये ले यो
0: हम छे पवनिया बासन ला के आल छे
2: मैटा बर्तन लगे ला या
0: हाँ हाँ
2: के जे ठगबा जगह लगे जे
0: हाँ ठीक है पकड़ ली मैया
2: ओ अल्ले ले भन्ना चले ली बोरे डेमे पर चले ली एक कोने गले परदेश वाली बर्तन आरु ले ले जे बुझली ना बोरे
0: हाँ।
2: पाबन तो जब जाल कर बे कर जे ना
0: तो पठा दे ना जो ना परदेश वाली का
2: आई भन्ना चल अली बाजार जैसे हैरान है जे तू बजा दिली बोरे मिला के दिए केना केना बर्तन सब दे जी
0: नहीं तो औरो सामान सब छै
2: और कदी कदी जाओ
0: फल फूल छै
2: फलो फूलो रखना जी
0: हाँ डायरी वाला दूध छै
2: दूध हो
0: पोरलाहा दही हो छै
2: अरे पोरला दही केना के लेबो अपना से पोर पड़े छै की है मा
0: हाँ तो वो अथिये ला लियो ना डायरी वाला दूध ला लियो ना पैकेट वाला छै
2: अच्छा ले अब की करते लोग काय काल दूध ने भेटे जाई अपन गाय भैंस के त या पैकेटो वाला त लिए पड़ते न ले जाय जो अंगना परदेश वाली का भटा दे जो बुली ना बरे आ सब जी मिला के दिया निक स
0: हते हते
2: महंगा दगा ने दियो
0: ना ना ना ना महंगा की दबो यो अतवो सामान त बिकबे न करे छे लोग का लोग लइयो ल नै चाहै छी
2: ले ले ले बाजार ने जा पड़ते बाप रे हो रे हो हमरा त एकदम माथी है तेरा क्या जते नहीं जते क्या ना सामान ये दे नहीं दे टेम नहीं चाहिए आप कल है कि ना पावन चाहिए अरे कोना गले परदेश वाली है कोना गला दगी कहाँ बाद है जे बर्तन ले के यल जे बैठे ना चाहिए डगर पर
1: आई कता छे बर्तन बला
2: वही अपने गाम गच्चे ठकबा
1: ठकबा यल छे
0: हाँ ये बात चल
1: हे रुको रुको आवे छिए बाप रे बाप हाँ तमरा बड़ी काथी से आसानी कर देलिए परेशानी से
0: अहिना है चलिए ना तो हम आब गेलिए ना
1: हमरा दिया तो
0: चीज छै।
1: दाम केना केना यै?
0: कम से कम 50 टका से लेकर 150 टका तक।
1: आगो बाबू सै त स्टीले के किया न किन लेबै?
0: अही सनक लोग जे छै न हमरा के व्यापार चौपट कए देलकै। जाओ स्टीले में करब भगवान खुश भए जात। चल लिए हम आब।
3: विश्व श्रोता मित्र आजुगुन नमस्ते के निर्धारित समय ठाम समाप्त भ गेल। आजुक कार्यक्रम सँ हम जीवत,
4: हम जिलेबिया,
5: हम ठकबा,
2: हम फूल कुमरी
6: आ हम सरिता विदा चाहै छी। नमस्कार, शुभ संध्या।
7: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz।
8: सम्पूर्ण सुविधा सँ सम्पन्न यूनिक अस्पताल रायपुर रूपनी आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज।
9: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरन, वीर अस्पताल काठमांडू, एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करैत अछि।
8: एहिठाम महिला, स्त्री एवं प्रसूति, पुरुष आ बाल रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि।
1: सेवा आ सुविधा सब
9: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा, ओपीडी, मेडिसिन सेवा,
1: ऑपरेशन सेवा, चर्म रोग, हार्ट जर्नी, डायबिटीज,
9: होल बॉडी जांच, सीटी स्कैन, आईसीयू, एनआईसीयू, ओटी,
8: डिजिटल एक्सरे, एसी, नॉन एसी कैबिन के सुविधा है।
1: संपर्क कर जाए
9: यूनिक अस्पताल रुकनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक।
1: फोन
9: 031-530-7776,
1: मोबाइल
9: 9805-60800 आ एम्बुलेंस के नंबर 9805-56205, 9805-56202।
10: फिरता फिरता 20% समक्यास फिरता चाहिए पानी चाहा पानी
11: कैश फिरता लिनु भएता
12: एनसेल पैक किन्नु भएता जहिले पनि जहाँ पनि पैक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल पैक किन्नु भएता शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: आफ्नो कुल ओइलको दुई मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाइ, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: एकटा खुसीको खबर छ,
2: कथि छ?
1: विदेश से छुट्टी में आयल आदमी सब के श्रम स्वीकृति के काम अब राज विराज में चालू भ गेल छी। आंख के फोटो आ फिंगरप्रिंट के लेल कतो बाहर नहीं जा पड़तो।
3: जी हाँ, अली कम्युनिकेशन
4: एठम विदेश जवाक लेल श्रम स्वीकृति के काम, देश विदेश के लेल हवाई टिकट बुकिंग आ टिकट के डेट चेंज, भारत के लेल रेलवे टिकट बुकिंग,
3: विदेश सेवा के लेल ओरिएंटेशन कक्षा, मेडिकल जांच, कतार आ दुबई के लेल विजिट वीजा एवं विदेश में चिट्ठी पत्र पठेबाक लेल कुरियर सेवा उपलब्ध अछि।
4: नया पासपोर्ट बनेबाक लेल ऑनलाइन केनाई आ विदेश जाय वाला के लेल राष्ट्रीय परिचय पत्र के फ्री ऑनलाइन फॉर्म भरनाई के संगे हरेक कंपनी के मोबाइल थोक दर में बिक्री आ मरम्मत करैत अछि।
3: संपर्क
4: अली कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल्स, चतुर्भुज मार्केट, मेन रोड, लोहार गली, राजविराज 4, सप्तरी।
3: फोन
4: 0315325575।
3: मोबाइल
4: 9801502475।
5: रंग बहार रंग बहार
6: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्परमा यामाहा रेजियर
5: बर्जर पेन्सले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियर 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनुहोस्।
6: साथै 65 इन्चको स्मार्ट टिभी, रेफ्रिजरेटर, वाशिङ मसिन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि।
5: घर रंगाऊ, खुशी बनाऊ, उपहार जित्ने अवसर पाऊ। बर्जर पेन्सले।

0: Mania and Extreme Energy Drink.
1: एक खन भरपा FM में साँझ के 7 बजल

0: बाढ़ के मौसम में सतर्क रहू आ सुरक्षित रहू। बाढ़ कोनो बखत आब सकत अछि, ताय प्रतिकार के लेल तैयार रहू।
1: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग DHM द्वारा नेपाल के विभिन्न भाग में औसत से बेसी वर्षा होबाक पूर्व अनुमान कयल गेल अछि, जै कारण बाढ़ आ कटान के जोखिम बढ़ सकत अछि।
0: सतर्क रह कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करू आ स्थानीय सूचना सब के पालन करू। अहाँ के सुरक्षा अही के जानकारी पर निर्भर अछि।
1: बाढ़ के जोखिम भेला पर ई उपाय सब अपनावल जाओ।
0: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, वडा कार्यालय, स्थानीय सरकार तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण संबंधी जिम्मेवार व्यक्ति सब प्राप्त बाढ़ संबंधी जानकारी आ चेतावनी के ध्यान पूर्वक सुनू आ तही अनुसार उपयुक्त निर्णय लिय।
1: नजदीक रहल नदी खोला में पानिक बहाव के नियमित रूप में अनुगमन करू। नदी किनार या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में वसवास कर रहल छी त सुरक्षित आश्रय स्थल या उचगर स्थान में रहू आ सुरक्षित रूप से निकले वाला रास्ता बाट खोजू।
0: सूचना द्वारा चेतावनी जारी भेल त देर नहीं कर तुरंत सुरक्षित स्थान में जेबाक लेल तैयार रहू।
1: अति आवश्यक सामान जना कि टॉर्च लाइट, मोबाइल फोन, चार्जर, दवाई, सूखा खाए वाला सामान, सफा पीब वाला पानी, नगद रुपया, नागरिकता, पासपोर्ट लगायत अन्य प्रमाण पत्र सब झटपट झोला में तैयारी अवस्था में राखू। झटपट झोला का घर भीतर जल्दी पहुँचा वाला आ तुरंत लौ जा सके वाला स्थान में राखू।
0: अपन संपत्ति के सुरक्षा करू, संभव अछि त बहुमूल्य सामान आ चौपाया के उचगर स्थान में लौ जाओ।
1: दोसरों के मदद करू, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपंगता भेल व्यक्ति सब के आवश्यक सहयोग करू। गर्भवती, सुतकेरी आ स्तनपान करा रहल माई के लेल सुरक्षित वास के व्यवस्था करू। ओ सब के लेल सकभर अलगे आ सुरक्षित चर्पी के प्रबंध करू।
0: विपद के बाद होवा वाला सर्पदंश तथा पानी जन्य संक्रामक रोग के जोखिम रहला सँ सचेत रहू। ई सूचना परिवार, पड़ोसी आ जन समुदाय में जानकारी कराओ।
1: बाढ़ दरवाजा तक आबि जाए ऐसे पहिने तैयार रहू आ आइए से सतर्क भ जाओ।
0: ई संदेश अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र ईसी मोड अंतर्गत के हाईग्रिड परियोजना द्वारा ऑस्ट्रेलियन सरकार आ सबल नेपाल के सहयोग में प्रसारण कयल गेल अछि।
2: चेतावनी सुनो, तुरंत निर्णय लिया आ सुरक्षित रहू। काम को टेंशन।

0: कुल ओइलको 2 मिनटको मालिस लिएर छ तपाईँलाई कुल दिलाउँछ गर्मी टाउको दुखाई थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम नवरत्न वर्ल्ड नम्बर 1 कुल ओइल चिसो चिसो कुल कुल
1: अपाङ्गता भेल व्यक्ति बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक आ बिरामी के विशेष ध्यान देबाक चाही।
2: आइ काल्हि अत्यधिक गर्मी आ गरम हवा चलो वाला समय अछि। ताई एहन अवस्था में जर एनाई उल्टी जका लगनाए थकान लगनाए बेसी प्यास लगनाए धड़कन बढ़नाए श्वास प्रश्वास में समस्या भेनाए अत्यधिक माथ दुखेनाए बेहोश भेनाए मांसपेशी सब दुखेनाए उल्टी भेनाए जेहन समस्या सब देखल जा सकत अछि।
1: गरम हवा के प्रभाव तथा लू लागत से बचा वाला उपाय सब
2: जूस शरबत आदि प्रशस्त मात्रा में पियल जाओ।
1: दिन भर प्रशस्त पानी आ झोर वाला चीज सब सेवन कैल जाए।
2: हल्का ढीला आ सूती के कपड़ा सब लगावल जाए।
1: संभवतः ठंडा स्थान में बैसल जाए।
2: दोपहर के समय में अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाओ।
1: बाहर जाइए पर छाता टोपी चश्मा आ पंजा प्रयोग कैल जाए।
2: खाली पेट बाहर नहीं जाओ।
1: दोपहर के समय में कड़ा शारीरिक परिश्रम नहीं कैल जाए।
2: स्वास्थ्य संबंधी कोनो प्रकार के समस्या देखल जाए तो स्वास्थ्य कर्मी संग नियमित संपर्क में रह अनुरोध कैल जाए। सबल नेपाल आ समावेशी अपांग संग सप्तरीक साझेदारी तथा CBM ग्लोबल के सहयोग में संचालित अपांगता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना द्वारा जनहित में जारी संदेश।
3: अपने साथ यूनाइटेड बोरकवा एफएम।

0: भित्र रहेका कुपनहरू हल्का प्लस रमाइलोलाई मिलाउनुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस् एक प्याकेट मामा चाउचाउ सित्तैमा।
1: मामासँग हल्का रमाइलो।
2: सम्पूर्ण सुविधा सह सम्पन्न युनिक अस्पताल रायपुर रुपनी आ युनिक सिटी अस्पताल राजविराज।
3: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान वीर अस्पताल काठमांडू एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करैत अछि।
2: एहिठाम महिला स्त्री एवं प्रसूति पुरुष आ बाल रोग संबंधी जाँच आ इलाज करैत अछि।
4: सेवा आ सुविधा सब
3: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा ओपीडी मेडिसिन सेवा
4: ऑपरेशन सेवा चर्म रोग हार्ट जर्नी डायबिटीज
3: होल बॉडी जांच सीटी स्कैन आईसीयू एनआईसीयू ओटी
2: डिजिटल एक्सरे एसी नॉन एसी केबिन के सुविधा है।
4: संपर्क कर जाए
3: यूनिक अस्पताल रुपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक।
4: फोन
3: 031-530-7076।
4: मोबाइल
3: 9805-60800 आ एम्बुलेंस के नंबर 9805-56205 9805-56202।
5: फिरता फिरता 20% समकेश फिरता जहिले पनि जहाँ पनि
6: क्याश फिरता लिनु भए त
7: एनसेल प्याक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिरता एनसेल एप मा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: राज विराजमै आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ डाक्टर रंजु पोखरेल MBBS MD डर्माटोलोजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल अछि।
1: जँ एहन कोनो समस्या अछि तऽ नीक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
0: याद राखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
1: फोन नंबर 9800811978।
2: संपूर्ण सुविधा से संपन्न यूनिक अस्पताल रायपुर रूपनी आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज।
3: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरन, वीर अस्पताल काठमांडू, एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करते
2: ऐठाम महिला स्त्री एवं प्रसूति पुरुष आ बाल रोग संबंधी जांच आ इलाज करते
4: सेवा आ सुविधा सब
3: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा OPD मेडिसिन सेवा
4: ऑपरेशन सेवा चर्म रोग हार्ट जर्नी डायबिटीज
3: होल बॉडी जांच CT स्कैन ICU NICU OT
2: डिजिटल एक्सरे AC नॉन AC कैबिन के सुविधा है।
4: संपर्क कैल जाए
3: यूनिक अस्पताल रूपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक।
4: फोन
3: 031-530-7076।
4: मोबाइल
3: 9805-60800 आ एम्बुलेंस के नंबर 9805-56205 9805-56202।
5: फिरता फिरता 20% समक्या सुफिरता सहिले पनी चाहा पनी
6: क्याश फिरता लिनु भाई ता
7: एनसेल पैक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरिद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल पैक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: आफ्नो कुल ओइलको दुई मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाइ, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: रंग बहार रंग बहार
2: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
1: बर्जर पेंस ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
2: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार पनि।
1: घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ। बर्जर पेंस।

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ से बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राज विराज में चल रहा है। फिल्म हनुमान अंश
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी से प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।
0: एखन भरकवा एफएम में रात के 8 बजल।

0: भेट गेल।
1: सुनू, जय श्री हनुमान ट्रेडर्स में बहुत मजबूत बॉक्स पलंग भेटे छे, खरीद कर आन लिया। वही ठाम सब सामान भेटे छे।
0: ओतय की सब तैयार करे छे यौ?
1: बॉक्स पलंग, थ्री पीस आ टू पीस दराज, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, कुर्सी, अलना, ड्रेसिंग टेबल, बाघ पंजा सोफा सेट।
0: जी हाँ, शादी विवाह आ ऑफिस के लेल संपूर्ण सामान आधुनिक मशीन से कंप्यूटर के डिजाइन अनुसार फर्नीचर तैयार कैल जाय छे।
2: 5x6 फीट के फुल बुटा के बॉक्स पलंग शादी सेट 35,000 आ 6x7 फीट के शादी सेट बॉक्स पलंग 45,000 में भ जायत।
1: संगे मॉडल किचन खरात कार्विन के व्यवस्था छे। पलाय, फर्मिका, रेडीमेड ढोका, हैंडल, हत्था, कांटी, कब्जा, स्प्रिट, चपरा आ शीशा लगायत फर्नीचर के संपूर्ण सामान उपलब्ध है।
0: प्रोपराइटर शंभु सुथियार।
1: जय श्री हनुमान ट्रेडर, राजविराज 1, कंचनपुर रोड, नहर चौक, चूड़ा मिल के बगल में।
0: मोबाइल
1: 9807040070 आ 9868666270।
3: ये दीदी, देह भारी छे आ डाँर पीठ से दुखाइए, कौन उपाय करबे?
0: बहुत पुरान आ अनुभवी छे डॉक्टर दिलीप कुमार सा, अपने घर में सेवा दे रहल छे, चलू न ओते जांच करा दे छी।
4: अब अपने भवन राजविराज में गजेंद्र नारायण सिंह सर माथा अंचल अस्पताल में कार्यरत प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार शाह, टीचिंग अस्पताल काठमांडू MD।
0: प्रसूति आ स्त्री रोग संबंधी संपूर्ण जांच आ इलाज करैत अछि।
4: सेवा आ सुविधा सब,
0: बच्चा दानी खसनाई के ऑपरेशन सेवा, गर्भवती महिला जाँच, स्त्री रोग, लिकोरिया, महीनावारी गड़बड़ी, पीठ आ डाँर दुखेनाई, पेशाब जलन, मांस बढ़नाई, निसंतान दंपति के परीक्षण, IUI सेवा, वीडियो एक्सरे,
4: आधुनिक लैब के संगे फार्मेसी सेवा उपलब्ध,
0: अवश्य सेवा के मौका देल जाए।
4: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार शाह, राजविराज, हनुमान नगर रोड, साबिक जन स्वास्थ्य ऑफिस से पूरब, छिन्नमस्ता अस्पताल के सामने दक्षिण साइड।
0: मोबाइल
4: 9816077985 आ 9817983।

0: extreme energy drink.
1: अपने सभक संग अछि भोरुकवा FM 92.8 MHz।

0: extreme energy drink.
1: अपने सभक संग अछि भोरुकवा FM 92.8 MHz।

0: এখন ভৰকবা এফএম ব ৰাইত কে 9 বাজল राज विराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल अछि।
1: जो एहन कोनो समस्या अछि त निक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करो।
0: याद रखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
1: फोन नंबर 9808111।

0: नवरत्न कुल ओइलको दुई मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाइ, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: रंग बहार रंग बहार
2: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
1: बर्जर पेंस ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
2: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि। घर रंगाओ, खुशी बनाओ, उपहार जित्ने अवसर पाओ।
1: बर्जर पेंस।

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ से बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राजबिराज में चल रहल अछि। फिल्म हनुमान अंश,
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश, सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी से प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।

अपने सभक संग अछि भोरुकवा FM 92.8 MHz।